0: श्रोते हो, रेडिओ मनभावनच्या कार्यक्रमांबद्दल आपले अभिप्राय देण्यासाठी आम्हाला फोन करा 9284499433 या क्रमांकावर, किंवा व्हॉट्सअप करा 9922337361 या क्रमांकावर.
1: इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की. वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने. ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में. कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में. कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की.

श्रोताओं, कबीर साहब मन की असीम और विराट क्षमताओं को प्रकट करते हुए कहते हैं, मन गोरख मन गोविंदो। यह जो तुम्हारा मन है, यह साधना के मार्ग पर चलता है, इंद्रियों को समेटता है, तो यही मन गोरख यानी महान सिद्ध योगी बन जाता है। और जब यही मन पूरी तरह शुद्ध होकर परमात्मा के प्रेम में विलीन हो जाता है, तो यही मन स्वयं गोविंद यानी साक्षात नारायण का रूप ले लेता है। मन ही अवघड़ होई। और जब यह मन संसार के सारे पाखंडों, जाति पाति और सामाजिक बंधनों से मुक्त हो जाता है, तो यही मन अवघड़ यानी एक मस्त और आज़ाद अवधूत बन जाता है। तो इस मन को इस परम अवस्था तक कैसे पहुंचाया जाए? अगली पंक्ति में कबीर इसका रहस्य खोलते हैं। जे मन राखे जाता करी। जाता करी का अर्थ है जतन से, बहुत संभाल कर, सजगता के साथ पहरा देकर रखना। कबीर कहते हैं कि जो साधक अपने इस चंचल मन को विवेक के पहरे में जतन से सहज कर रख लेता है, इसे व्यर्थ के प्रपंचों में बिखरने नहीं देता, तो आपे करता सोई। वह मनुष्य स्वयं करता यानी उस सृष्टि

0: अर्थात मैं वही हूँ के सिद्धांत का शिखर है। कबीर यहाँ समझा रहे हैं कि मन की बंधन का कारण और मन ही मोक्ष का द्वार भी हैं। जब तक मन बहिर्मुख है वह वासना है, जब मन अंतर्मुखी हो जाता है तो वह उपासना बन जाता है। गोरख, गोविंद और अवघड़ असल में चेतना की अलग अलग उच्च अवस्थाएं हैं। कबीर का यह सूत्र हमें बाहरी कर्मकांडों से हटाकर सीधे आत्म साधना पर केंद्रित करता है। ईश्वर को कहीं बाहर मत ढूंढो, अपने ही मन को सहेज लो, वह स्वयं परमात्मा हो जाएगा। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपने मन की ताकत को पहचानिए। हम अपनी ही सोच से खुद को छोटा, कमजोर और लाचार मान बैठते हैं। हमारा मन 24 घंटे जिन व्यर्थ की चिंताओं में बिखरा रहता है। सोचिए, अगर वही ऊर्जा हम अपने भीतर समेट लें तो क्या अद्भुत घटित हो सकता है। आज कोशिश कीजिए इस मन को जाता करी, यानी जतन से सहेजने की। जब भी मन किसी की बुराई में, ईर्ष्या में या हीन भावना में बिखरने लगे तो इसे रोकिए, इसे शांत कीजिए और उस राम के महामंत्र को लगाइए जो मन की सारी कालिमा को धोकर इसे गोविंद बना देता है। जब आपका मन आपके वश में होगा तो आपके जीवन में परम शांति और दिव्यता का अवतरण सहज ही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: रेडियो मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।
2: बात तथागता, तू त्या मई जे सामने शे त्याले भिडणारा, अस्तित्वना शोध लेणारा, विज्ञान माझे फायदानं शे त्याले गती देणारा, सत्य सत्य आणि सत्य शोधणारा, बट्टा जीवेसनी पैदास बनस चार गोष्टीस मातीन, धरणी पाणी आगीन वारा, ह्या विज्ञान मातल्या सत्यमझार जीवेसना ठाव दिखियस, जीव बहे आणि जीवना उमेद बहे, चितना ढिगारा मजार संज्ञा यज्ञान संस्कार आखो यज्ञा, या बठ्ठा मी सनी बनस मन, या मन सगट, या पाच गोष्टी स्थायी बनस जीवन शरीर। आता मेणबत्तीनच दाखा, त्यामा उजीड बी शे आणि जीव बी, या दोन्ही जवळ एक जीव होतस तव ती मेणबत्ती म्हणावस। पृथ्वी हाई तत्व बलतो मुद्दानं, बट्टा अवयव एकमेकले चिटकी राहतस त्या पिरथी विनाभय, नाही ते नदीपूर मातला वडंगानागत गत राहती कवय तरी भेटवती, अवयसनेबी सत्यागत्या तशीच होती। तेज अनागीन उभ्या ताकात देणाऱ्या गोष्टी, जीवेस न जितो पण ह्या तेज ना भय, हाई हवा बलती मुद्दानी पलगडी जगाडस आणि जागाडस, हरेक नाडी न सासले न सासणं निरोग पण हवानाच भय, नाही ते न साजात्यात सडी कॅन्सर रोग ना माईक हवाना बिगर, हाय ज्ञान विज्ञान बठ्ठा सजीवेस ना गुंता वस लागू, माणूस जनावरे पक्षी आखो यलटा पिके फळे फुले जंतू फिंतू बट्टासाठीच, बयान ताकातनी हाई सटल जिता राहावा गुंता, ईजन आकर्षण चुंबकनं त्यासना मिसय चेतना घुसस शरीरमान, चेतना पसरेल राज जगभर, चेतनाना बयेस दखस जीव सापडं शरीरमान, जग मातली चेतनानं विज्ञान शरीरमा पसरस, बोध संज्ञा विज्ञान संस्कार आणि यज्ञाना भय, मराना वखय चेतनानं विज्ञान पटी संधी वस म्हणजे दुसरीकडे चिटकस, मराना टाईमले

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर स्वागत करते हैं आप सबका। हैप्पीनेस इंडेक्स की इस श्रृंखला में बहुत सी बातें सामने आई हैं और अगर पिछली कड़ी को देखें तो याद आता है कि हमने बात की थी कि क्या एंटरटेनमेंट खुशी दे रही है। हम अभी तक ये सोचते थे कि हम टीवी जो देख रहे हैं या फिल्म देखने जाते हैं या किताब पढ़ लेते हैं वो हमें एंटरटेन करती है कुछ टाइम तक, मेरे थॉट्स जो मुझे तंग कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनसे मुझे दूर ले जाती है, मैं किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता हूँ। लेकिन फिर ये बात समझ में आई थी कि क्यों कहा जाता है कि टीवी देखना या फिल्म देखना एक एडिक्शन बन सकती है, क्योंकि जैसे ही हम जो वहाँ सिचुएशंस हो रही थी उसमें इन्वॉल्व होते जाते हैं, उन्हें अपना थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसे चूज करने का हक उनको दे देते हैं। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बात थी लेकिन जब इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, एक्सपीरियंस करते जाएंगे, हमें समझ में आता जाएगा। आज थोड़ा इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं कि हाउ डज इट रियली वर्क। हमारा सौभाग्य हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: इनफैक्ट सिस्टर शिवानी, इट्स लाइक अगेन आई कैन अंडरस्टैंड नाउ व्हाई पीपल से कि आप रोज हमारे साथ ड्राइंग रूम में होते हैं, बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इट्स अ जर्नी और हर बार हमारा जो अनुभव है, हम बात यहाँ कोशिश करते हैं समझें फिर उसे जाके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो एक रिकैप लेना चाहेंगे आपके साथ कि व्हाट रियली हैपन्स जब मैं किसी भी टीवी के प्रोग्राम में या फिल्म में या नॉवल में इन्वॉल्व हो रहा होता।
1: Yeah, it's not that we're not trying to say के हम ये नहीं देखें। Fundamental of course हम choose करें क्या हम देख रहे हैं, क्योंकि information तो अंदर feed हो रही है। सिर्फ अब ये ध्यान रखें देखते हुए भी कैसे देखें। You know, and it's applicable both the places। जैसे movie को या TV को देखते हुए कैसे देखें, और वही चीज़ फिर आपकी practical day to day life में आएगी कि ये जो drama सारा दिन, इसको भी हम drama ही कहेंगे। My journey of life is a drama। Why is it a drama? Because एक scene के बाद दूसरा सीन विथ सो मेनी एक्टर्स इन्वॉल्व्ड। तो दोनों तरफ हमें ये सीखने को मिलता कि ड्रामा की हर सीन को कैसे देखें। तो जब हम मूवी देखते या टीवी देखते, जस्ट वॉच योर सेल्फ। अगर आप हाफ एन आवर का सीरियल देख रहे हैं या 3 घंटे की मूवी देख रहे हैं, सिर्फ आज शाम को अगर आप कुछ देखें तो उसको देखते हुए अपने मन को बीच बीच में देख लेना कि वो कैसे कैसे।
0: एक्चुअली आई वांट टू शेयर व्हाट हैपेंड टुडे। मैं जब आ रही थी तो पहले मैं कुछ अपना सोच रही थी, ड्राइवर ने गाना चला दिया, वो मेरा सबसे फेवरेट गाना था, एकदम से मुझे स्ट्राइक किया मैं गाना सुनने लग जाती हूँ तो मेरा थॉट खत्म हो जाता है। लेकिन मैंने इस बार चाहा कि नहीं, मैं जो सोच रही थी वो करती रहूं, बट उसकी अट्रैक्शन इतनी थी गाने की, गानों के शब्दों की, और तब मैंने देखा कि गानों के शब्द ना सिर्फ मुझे इन्वॉल्व करते गए बल्कि वो इमोशन भी क्रिएट होने, क्योंकि मैं देख पा रही थी, हम इस पे बात कर चुके थे इसलिए। तो अब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे वो इमोशन तक नहीं जाना, मुझे वापस आना है अपने थॉट पर मेरा मन नहीं था आने का मेरे को, क्योंकि उसमें एंजॉयमेंट मिल रही थी।
1: स्टिम्युलस था ना, वो एक स्टिम्युलस था जो मेरे अंदर वो इमोशंस क्रिएट कर रहा था। क्या होता, हैप्पीनेस या पेन दोनों चीज हॉर्मोन्स तो सिक्रीट करती है ना बॉडी के अंदर, एंड द माइंड नीड्स दैट क्रेविंग बट द बॉडी ऑल्सो नीड्स दोज हॉर्मोन्स। तो इफ आई एम वेरी वेरी स्टेबल, अगर मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है, दिस ऑल्सो डिवेलप्स धीरे धीरे ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन मेरी बॉडी की कुछ वो होती है एडिक्शंस होती है, वो हॉर्मोन्स की मुझे आदत पड़ी हुई है, तो मुझे कुछ ऐसा बाहर से चाहिए होता है स्टिम्युलस, कि वो स्टिम्युलस आएगा, वो स्टिम्युलस मेरे अंदर वो इमोशंस क्रिएट करेगा, और जैसे ही वो इमोशंस क्रिएट होंगे मेरे बॉडी के अंदर भी वो हार्मोन सिक्रेट होंगे एंड आई फील गुड, जैसे कि मुझे वो चीज मिल गई जो वो चाहिए थी। फिर इवन भले वो दर्द के ही यू नो इमोशंस हो, वो एड्रेनालिन सिक्रेट हो, लेकिन वो सिक्रेट हुआ ना, वो बॉडी को जो चाहिए था वो सिक्रेट हुआ, आई फील गुड एंड देन आई से दिस इज एंटरटेनमेंट। यू नो ये मुझे चाहिए, दिस मेक्स मी फील गुड इवन इफ आई हैव क्राइड फॉर हाफ एन आवर। हाउ कैन आफ्टर क्राइंग यू फील गुड अदरवाइज? तो कोई लॉजिक ही नहीं। आप आधा घंटा पिक्चर देखा, आप कितनी बार रोए उसके साथ, यहाँ तक कि आपने हैंकी तक निकालना पड़ गया, एंड देन वी से आई फेल्ट गुड आफ्टर वॉचिंग द मूवी। वॉट फेल्ट गुड? समवेयर दोज इमोशंस गॉट क्रिएटेड, द बॉडी सिक्रेटेड व्हाट इट हैड टू डू, एंड आई वॉज लाइक ओके दिस इज वॉट इज माई नीड। जैसे ड्रग्स है, डैमेजिंग है, लेकिन बॉडी को आदत पड़ गई है ना, तो जब तक बॉडी लेती नहीं है उस चीज को,
0: फील वो हाँ,
1: लेना उसको अनकंफर्टेबल लगता है। तो इसी तरह अगर मुझे एक पर्टिकुलर प्रोग्राम से वो स्टिम्युलस मिलता है, देन धीरे धीरे धीरे आई स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, कि ये तो मुझे देखना ही है। अगर आज मैं पहुंच नहीं पाई टाइम पर, या वो लाइट नहीं है घर में एंड वो प्रोग्राम नहीं आ रहा, या आई विल फील वेरी वेरी अनकंफर्टेबल। सो दिस इज लाइक जिसको किसी को वो नहीं मिला जो उसको उसकी आदत होती है। जैसे आपने वो सॉन्ग के साथ किया, नेक्स्ट टाइम हम सभी एक्सपेरिमेंट इसको करके देख सकते हैं कि जब हम कुछ देख रहे हैं, पहले जब हम बैठते हैं जस्ट देखने के लिए, आर माइंड इज क्वाइट स्टिल, यू नो. इनफैक्ट पहले तो आर माइंड इज विद अदर थॉट्स. सो दिस इज अबाउट वॉचिंग आर माइंड. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जैसे ही हम आकर बैठे टीवी के सामने, पहले थोड़ी देर मेरे मन में कुछ और चल रहा है जो मैं छोड़कर आया हूँ, अभी ऑफिस का काम या घर का. धीरे धीरे वो थॉट्स खत्म हो जाती हैं एंड यू विल एक्सपीरियंस अ लिटिल स्टेज वेयर यू आर इन, यू नो, नॉट टू मेनी थॉट्स. दिस माइंड इज बिकमिंग साइलेंट, क्योंकि ये वो वाली जो बातें लेकर आया था घर, वो बातें तो खत्म हो गई. तो ये माइंड थोड़ा थोड़ा स्टिल हो जाता है. ये जो स्टिलनेस की स्टेज है, ये है कि यू आर हियर, प्रोग्राम इज देयर एंड आप उसको डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह आप उस प्रोग्राम को देख रहे हैं. उसका इफेक्ट मुझ पर नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये बहुत थोड़ी देर रहता है. धीरे धीरे हमारी जो नेक्स्ट स्टेज आती, वो आती है कि हम जजमेंटल होना शुरू करते हैं. ऐसे क्यों बोल रहे हैं ये, ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे व्हाटएवर आवर ओपिनियन.
0: देखा उसने ऐसे किया तो अब ऐसा ही होना चाहिए. अब व्हाट नेक्स्ट,
1: इवन इन द क्रिकेट मैच ऐसे क्यों,
0: ये बॉल किसने,
1: यू सी. सो द सेकंड स्टेज बिकम्स जजमेंटल, कि हम अपना ओपिनियन चाहते हैं कि दैट इज हाउ इट शुड, ऐसे करते तो. इवन द एक्टर्स क्लोथ्स, द सीन और व्हाटएवर, एवरीथिंग, आई स्टार्ट बिकमिंग जजमेंटल. जैसे ही हम जजमेंटल शुरू हुआ, मतलब क्यों, क्या, कैसे के क्वेश्चन मार्क की सीरीज में गए, ये जो स्टिलनेस थी वो क्या हो गई,
0: वो खत्म हो गया.
1: बिकॉज वो माइंड ऐसे ऐसे, ऐसा क्यों, ऐसे कैसे, ऐसे, तो द माइंड स्टार्ट्स गेटिंग डिस्टर्ब. वो स्टिलनेस हमारी खत्म हो गई. सो दिस वॉज द सेकेंड स्टेज. द थर्ड स्टेज जो आती, कि हम उस कैरेक्टर की स्टोरी के अंदर ही
0: इन्वॉल्व हो जाते,
1: पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं. एंड दैट स्टेज विल बी कि वो कैरेक्टर जो इमोशन वहां एक्सपीरियंस कर रहा है, वो इमोशन आई स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग हियर. तो फिर आई एम टोटली इन द स्टोरी, लाइक पूरी तरह से. देन आई हैव नो अदर थॉट एंड देन आई, माय क्रिएटिविटी इज ओवर, बिकॉज नाउ आई एम ओनली क्रिएटिंग व्हाट दे आर क्रिएटिंग. मेरी अपनी अब कोई नहीं रह गई.
0: उससे पहले तो मैं कर रही थी, वैसे
1: उससे पहले
0: जजमेंटल जब मैं हो रही थी,
1: पर जैसे जजमेंटल हुए तब क्या हुआ, क्रिएटिविटी नहीं थी. जैसे ही आप जजमेंटल होते हैं, आपकी एनर्जी तो उल्टा खत्म होने लगती है, क्योंकि आप किसी और को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. आई कैन सिट अक्रॉस द टेलीविजन एंड कीप ऑन सेइंग व्हाट आई वांट टू से. मैं कितना भी जजमेंटल हो सकती हूँ, कैन आई डू एनीथिंग अबाउट इट. मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ सामने से बैठकर, और मैं कहूँ ये नहीं पहनना चाहिए था, ये पहनना चाहिए था, ये सेट ऐसा नहीं, कैन आई डू एनीथिंग अबाउट इट. नो, आई एम थिंकिंग ऑफ दोज थिंग्स विच आर नॉट इन
0: बट माई कंट्रोल.
1: बट
0: आई हैव अ राइट टू हैव माई ओन ओपिनियन.
1: दैट्स ओके, दैट्स फाइन, यू आर हैव अ राइट. लेकिन आप बस बैठे हैं और यहाँ आपका माइंड कंटिन्यूसली वो थॉट्स क्रिएट कर रहा है उन चीजों के बारे में जो आपके कंट्रोल में नहीं है. यूजफुल एनर्जी?
0: No, it can't be. Yes.
1: Useful energy.
0: Actually, I know it's of no use.
1: It's a drain. ये आपका drain शुरू हो गया, कि जो वो stillness थी, वो आपका drainage शुरू हो गया, क्योंकि आप एक एक वो thought create कर रहे हैं जो आपके control में.
0: Actually, और इससे मुझे आदत भी पड़ती जाएगी.
1: Exactly. यही चीज तो फिर practical life में आएगी ना, day to day.
0: हर एक को, oh yes.
1: जो आपने कहा, do I not have the right to have an opinion? Yes.
0: So then I'll have my right with everyone.
1: सारा दिन पे. ये बिल्कुल same चीज फिर रोज के ड्रामा में होती है ना. दैट्स व्हाट वी सेड, जो टेलीविजन के ड्रामा के साथ पहले प्रैक्टिस होती है, वही चीज फिर हैबिट बन गई, तो वही चीज फिर मेरे डे टू डे लाइफ में आती है. सो वी वेंट थ्रू दीज थ्री स्टेजेस, पहले स्टिलनेस, फिर जजमेंटल, एंड तीसरा तो पूरी तरह से इन्वॉल्व. एंड जब पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गई, तब तो अपनी थॉट क्रिएट करने की मेरी अपनी कैपेसिटी है वो भी भूल गया. मेरी थॉट की पावर मैंने टोटली उस प्रोग्राम को दे दी. नाउ दिस, because I'm doing every day, it's not ki I'm watching a movie just once in a while ya main TV dekh rahi hu once in a while, nahi, hum roz kar rahe hain. To koi bhi cheez jo roz karenge,
0: well, of course,
1: wo ban gayi meri habit. Ab jo humne pichli bar bhi dekha ki agar gussa office mein sirf kar rahe hain ye soch ke ki gusse se kaam hota, lekin wo meri agar ban jati hai habit, to wo habit mere sath
0: har jagah meri personality banti. Yes, now I understand it actually.
1: Ab ye tha, शुरू किया था जब बैठ कर देखना, मैं एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर, एक साक्षी दृष्टा थी, लेकिन आधे पौने घंटे के अंदर अंदर मैं उस ड्रामा के अंदर पूरी तरह से घुस गई. अब यही चीज फिर सारा दिन होती, क्योंकि अब मुझे हैबिट पड़ गई है. अब धीरे धीरे तो वो साक्षी दृष्टा होना कैसे वो ही हमें आज नहीं पता चलता. और इसलिए आज हमारी वोकैबुलरी ये हो गई है कि अटैचमेंट तो नेचुरल है, डिटैचमेंट, डिटैचमेंट का कॉन्सेप्ट कंफर्टेबल नहीं लगता लोगों को, बहुत कोल्ड लगता है कि हम बहुत स्टिल हैं, हम बहुत डिटैच्ड हैं, हमारे ऊपर असर क्यों नहीं पड़ रहा. लेकिन ये जो असर पड़ने का, प्रभाव पड़ने की आदत जो पड़ी थी वो इससे पड़ती है,
0: वो कंटिन्यू. इनफैक्ट अगर हम देखें, वो जब अभी हुआ था, जब मुंबई का जो अटैक हुआ था, तो उसमें वो जो कितने दिन तक, 2 दिन लगातार चला था, हम पूरा टाइम डिस्टर्ब्ड रहे थे.
1: लेकिन अभी इसको ही अगर आप देखो, जो न्यूज में अगर कोई एक इंसिडेंट हुआ है, absolutely के वो नहीं है, comfortable नहीं है बात, लेकिन जब हम उसको 24 घंटा हर रोज स्ट्रेच करते हैं, और उसमें हम करते क्या है, किसी के साथ कुछ हुआ, हम उसी को लेकर वो रोते हुए को बार बार दिखाएंगे, बार बार उसको पूछेंगे आपको कैसा फील हो रहा है. समवेयर वी आर यूजिंग इमोशंस एंड द अदर पर्सन फीलिंग टू सेल इट इन टू द मार्केट. और क्यों? क्योंकि हम फील करते हैं कि ये लोग देखना चाहते हैं. दिस साउंड वेरी harsh, this sounds very harsh, but it is the truth. हमें लगता है कि ये रहम है, actually नहीं, उनको रहम नहीं चाहिए, उनको compassion चाहिए, उनको love चाहिए. लेकिन love नहीं है. अगर हमने भी pain create किया कुछ भी ऐसा देखकर, जब ये पूरा terror attack हुआ, तो what was the information that was being flooded everywhere? कि आप सबको गुस्सा होना चाहिए इस बात को लेकर. Why are you not angry? People should get angry. वही तो solution है. How can anger be the solution to anger? जिन्होंने जो किया, that was a sign of anger, resentment. Already उस शहर के अंदर जो वातावरण फैल चुका था, वो दर्द का था. बहुत लोगों की जीवन ऊपर नीचे हो गई थी. बहुत लोग डर में थे, अपने अपने घरों में trapped थे. In an environment जहां already इतना pain है, इतना दर्द है, we're trying to say get angry.
0: नहीं, and in fact वही बात कर रही हूँ कि वो situation, अगर हम जो हम जिस मुद्दे पे थे, उस situation ने जो कहीं और हो रही थी, उसने पूरी तरह से पूरे जो वॉच कर रहे थे, टीवी देख रहे थे, उन सबके माइंड्स को कैप्चर ही तो कर लिया.
1: Yeah, but not even see, अगर हम देख भी रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद मेरे माइंड में इमिजिएटली ये आना चाहिए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. I'll tell you a very beautiful thing that happens at the Brahma Kumaris. We're not saying ki ye hona chahiye jo. Something very very nice that happens here is ki jab bhi duniya ke kisi bhi hisse mein kuch bhi ho jata hai, thoda bhi upar niche, chahe wo natural calamity hai ya wo kuch aisi baat hai, immediately everyone knows this, har center par jitne bhi hum sare bhai behne hain, we have collective meditation. हम सब इकट्ठे मिलकर, अलग अलग अपने अपने रीति से घर पर तो करते हैं, लेकिन कलेक्टिव टाइम फिक्स करके हम सब सेंटर पर बैठते हैं, और सेंटर पर इकट्ठे मिलकर वी क्रिएट वाइब्रेशंस ऑफ पीस, लव एंड पावर. क्योंकि भगवान परमात्मा हमेशा ये कहते कि दर्द तो ऑलरेडी है. आप दर्द के बारे में चर्चा करते हो, दर्द की खबरें सुन रहे हो, और दर्द क्रिएट कर रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस टाइम? Don't just see it as a stimulus. See what is my responsibility now. तो वहाँ दर्द है, हमें क्या भेजना? हमें प्यार भेजना, हमें शांति भेजनी. लेकिन वो कब भेज पाएंगे? जब हम detached हैं. लेकिन अगर मैं ही दर्द में चली गई, हाय क्या हुआ, कैसे हुआ, तो where is the power?
0: और in fact unknowingly मैं दिए ही जा रही हूँ, भेजी जा रही हूँ.
1: हमें लगता है कि ओ मैं तो दिल्ली में बैठी हूँ, ट्रेजेडी तो बॉम्बे में हुई, बट इट्स नॉट ट्रू. इट्स अ कलेक्टिव वाइब्रेशन.
0: डेफिनेटली सिस्टर शिवानी, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन जब अगेंस्ट चीजें हो रही हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स के, ह्यूमन काइंड के, तो हम ही तो हैं, इंसान ही तो हैं जिन्होंने अपनी वॉइस भी रेज करनी है. तो अगर हम स्टेबल होके देख रहे हैं, या मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज को, इजंट इट बीइंग नॉन रिएक्ट, आई मीन नॉट डूइंग थिंग्स,
1: you become very passive.
0: Yes, you know, like मतलब आप बहुत स्लो हो जाते हैं. आपको अपनी बात कहने का भी तो वो जरिया चाहिए.
1: Absolutely. लेकिन अपनी बात कहने का जो तरीका है, एक तो वो मैटर करता, और दूसरी अपनी बात कहने के लिए पहले आपकी सोच में तो बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए ना. जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, सी एंगर, पेन, हर्ट, उस टाइम जो हम जिस अटैक के बारे में बात कर रहे हैं, जो 3 फंडामेंटल इमोशंस बहुत हैवी थे, एंगर, पेन, हर्ट, रिजेंटमेंट, एंड स्पेशली वो पूरी, यू नो, एक पूरा एक फ्लेवर जो क्रिएट हो गया हर जगह, इट वॉज दीज 3. जब हम इन तीनों इमोशंस के वशीभूत हैं, ये तो डू वी हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्या हम उस समय राइट सोच पाएंगे, राइट बोल पाएंगे? अब इसी स्पेसिफिक बात को भी अगर हम देख लें, जितनी दिन वो न्यूज़ में था, हम देख रहे थे क्या हो रहा है, सो वी वर ऑल्सो, यू नो, एवरीवन इज वेरी एंग्री, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट. किया हमने क्या इज अ क्वेश्चन मार्क. हमने क्या किया अपने देश के लिए?
0: कलेक्टिव एंगर जो था,
1: कलेक्टिव एंगर था, कलेक्टिव एंगर का रिजल्ट.
0: अगेन, यू नो, दिस इज व्हाट पीपल हैव सीन.
1: सी, इफ यू वांट टू वॉइस योर ओपिनियन, ऑल द मोर यू रिक्वायर स्टेबिलिटी. वी थॉट के एंगर एंड रिएक्शन, हमारी आवाज ज्यादा, यू नो, जैसे नॉर्मल भी, वो तो बड़ी बात है, छोटी बात पे ऑफिस में भी हम देखेंगे या घर पे भी, कि मैं जोर से चिल्लाकर बोलूंगा ना तो आपको ज्यादा ठीक से समझ में आएगी. सी, द थिंग इज, फर्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन यू, कि आप जो इमोशंस क्रिएट करते हैं उसका आपके ऊपर इम्पैक्ट, फिर कलेक्टिव सब लोगों के ऊपर उसका इम्पैक्ट, फिर उसका एंड रिजल्ट. इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, हमने बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं, हमने सिर्फ उसके बारे में, जितने दिन वो न्यूज़ में था हम भी न्यूज़ के साथ थे, हम भी उसको, यू नो, ऑफिस में भी वही बात हो रही है, घर में भी वही बात हो रही है, हमने किया क्या? 10 दिन 15 दिन, आई थिंक दैट्स अबाउट इट ऑल. उसके बाद न्यूज़ चेंज हो गई, कोई और चीज हो गई दुनिया के किसी और कोने में,
0: पब्लिक मेमोरी बहुत छोटी होती है,
1: हम उसके बारे में बात करने लगे. जिनके जीवन पर उसका इफेक्ट हुआ, जो आज दर्द में है, वो तो आज भी दर्द में है. हमने उनके लिए क्या किया? कुछ नहीं किया. हमने कंट्री के लिए क्या किया इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. हमने सिर्फ गुस्सा किया. व्हाट डज दैट रिजल्ट?
0: अच्छा, लेकिन
1: अगर सारे इकट्ठे होकर, इफ वी हैव टू रियली डू समथिंग उसके लिए, क्योंकि टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, इवन कुछ करने के लिए पावर चाहिए. अगर हम अंदर से हर्ट हैं, गुस्से में हैं, हम वीक हैं, वीक अंदर से वीक होकर सिर्फ शोर मचाकर हम कोई परिवर्तन ले आएंगे, विल नॉट रियली वर्क. एंड वी नीड टू रिमेम्बर, वो करना, वो उस तरह से करना, धीरे धीरे मेरी क्या बनते जा रहा
0: है,
1: हैबिट बनता जा रहा है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो क्या होता है कि हम उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, वी नीड टू रिमेम्बर, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, डिटैच होकर देखें एंड तुरंत अपने आप से पूछें, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. सो दैट लाइक आई वाज शेयरिंग, एट द ब्रह्मा कुमारीज हम लोग कलेक्टिव मेडिटेशन करते हैं, कि हम सब बैठकर, और ये तब नहीं सिर्फ कि अगर कुछ ऐसे इंसिडेंट होता, बट एवरी मंथ ऑल्सो. एक है कि एवरी डे हम शाम को जब मेडिटेशन करते, 6:30 to 7:30, हम दो बार मेडिटेशन करते हैं हर रोज दिन में. वन इज इन द मॉर्निंग, एंड ये हमने बहुत, यू नो, क्लियरली, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर जैसे ये किया है, कि मॉर्निंग में जो मेडिटेशन है वो है अपने ऊपर काम करने का समय, अपनी मेहनत, अपने संस्कारों को परिवर्तन. और शाम को जब मेडिटेशन करते, इट इज़ फॉर सर्विंग द वर्ल्ड. कि सुबह आपने मेडिटेशन किया, आपने अपने अंदर पावर्स भरी, शाम को आप मेडिटेशन करो एंड वो पावर्स जस्ट सेंड इट आउट टू द वर्ल्ड, जस्ट सेंड इट आउट. Now, when I came first to the Brahma Kumaris, I just didn't know how this works. ये कैसे होगा कि हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं कुछ, and this is going out to the world. ये, and for me it was a question mark, कि इसका क्या फायदा हो सकता है, कि हम यहाँ बैठे हैं, वो किसी और देश में है, वो तो अभी भी दर्द में ही है. एंड ये ऐसी चीज है जिसका कोई तुरंत प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं पता चलता, कि यू नो, जैसे वी यूज टू कॉल दिस डोनेशन ऑफ पीस एंड पावर. तो आई सेड, धन डोनेट करो तो दिखाई देता, कपड़े डोनेट करो दिखाई देता, मतलब हमें, ये नहीं कि फॉर, एटलीस्ट आई कैन सी दैट आई एम गिविंग इट टू यू एंड यू आर टेकिंग इट, एंड आई सी कि आपको वो मिला जो आपको चाहिए था. लेकिन पीस डोनेट करो, वो आप तक पहुंच रहा है कि नहीं, आई वुड नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. के बट नाउ व्हाइल आफ्टर डूइंग इट फॉर सो मेनी इयर्स, आई हैव रियलाइज्ड इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. हाँ, हमें उसका तुरंत वो नहीं पता चलेगा कि वो किस तक पहुंचा, क्या हुआ, लेकिन जब ये समझ में आ गया कि थॉट्स एनर्जी है, और जो एक एक थॉट हम क्रिएट करते वो वाइब्रेशन है जो एनवायरनमेंट में फैलता है. पहले मुझे मिलता, मेरे आसपास जो है उनको मिलता, देन ग्रेजुअली आई अंडरस्टूड कि एक एक थॉट जो हम क्रिएट करते वो वाइब्रेशन है. इट डजंट स्टे इन, इट रेडिएट्स, इट वाइब्रेट्स इन टू द एनवायरनमेंट. एंड वो जिनके प्रति भी क्रिएट किया गया होगा, बिकॉज दैट्स व्हाट वी हैव सीन एवरी टाइम, कि जो थॉट मैं आपके लिए क्रिएट करूंगी
0: आप तक जाएगा,
1: वो आप तक पहुंचेगा. तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, इट इज कॉन्शियसली क्रिएटिंग थॉट्स. यू नो, वी डोंट रियलाइज, हम लोग आज सब बोल रहे हैं कि दुनिया में शांति होनी चाहिए, एवरीवन इज टॉकिंग कि दुनिया में शांति होनी चाहिए. कैसे आएगी? जब हम एक एक शांत रहेंगे, तब ऑटोमेटिकली शांति के वाइब्रेशंस फैलेंगे, ऑटोमेटिकली शांति होगी. हम सब अशांत हैं और हम कहते हैं दुनिया में शांति होनी चाहिए. दुनिया मीन्स व्हाट? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड. हरेक जो हम हैं, हम सबकी मन की स्थिति क्या है, कलेक्टिव सबकी मन की स्थिति को अगर हम लें, वो दुनिया की स्थिति है. तो हम कहते हैं दुनिया में शांति हो तो मैं शांत हो जाऊंगा, यू नो, दुनिया सब ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा. मैं शांत होंगी तो दुनिया में शांति आएगी. तो नाउ वी आई कांट वेट कि पूरी दुनिया में सभी 600 करोड़ लोग जब शांत हो जाए तो दुनिया शांत होगी. लेकिन एक एक करेगा, एक एक क्रिएट करेगा वो पीसफुल वाइब्रेशन, तो दुनिया में तो आएगी. लेकिन सबसे पहले I will be peaceful, my family will be peaceful, where I'm working will be peaceful. तो ये जो हम meditation करते हैं, we do it every evening, 6:30 to 7:30, serving the world, sending out powers of peace, love and power. And specifically, every third Sunday of the month, ये तो fixed है, all over the world, every third Sunday of the month, 6:30 to 7:30, सभी भाई-बहने center पर आते, and it is called meditation for world peace, ki vishv mein shanti ke liye hum ikatthe milkar meditation karte.
0: In fact, you know, it's such a beautiful aspect ki it will make me feel so good ki I'm doing it for the world.
1: Yeah.
0: You know, abhi tak to sab kuch, even program mein bhi hum apne liye kar rahe the, you know, har cheez hum par focus ho rahi thi. और कहीं ना कहीं वो जो ह्यूमन एलिमेंट ये होता है कि हम दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं. और हर बार हमारे को लगता है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम इतने बिजी हैं अपनी लाइफ में, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कुछ किसी का दर्द नहीं बांट सकते, कुछ नहीं कर सकते. सो दिस गिव्स मी सच अ गुड फीलिंग. एक्चुअली वी शुड ऑल ट्राई टू एक्सपीरियंस इट.
1: इन दिस केस इट इज कि जब आप कर रहे हैं किसी और के लिए, सबसे पहले किसको मिलता?
0: हाँ, खुद को मिलता
1: सबसे पहले. सी, इफ आई डू समथिंग फॉर यू, इट्स फॉर यू. तो उसमें शायद हो सकता है मुझे कोई बेनिफिट नहीं, लेकिन इसमें सबसे पहले मुझे मिलता और फिर मेरे थ्रू औरों तक पहुंचता. एंड जब हम देते हैं, दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल फीलिंग. लेना लेना सारा दिन, ये तो बहुत ईजी है, लेकिन जो खुशी मिलती है जब हम देते हैं, दिस इज समथिंग टू बी एक्सपीरियंस्ड. एब्सोल्युटली.
0: इन फैक्ट इट ऑलवेज हैपेंस, यू नो, हम कुछ भी जब देते हैं हमें अच्छा लग रहा होता है.
1: यू नो, गिफ्ट, जैसे गिफ्ट होता है, आई हैव टू आस्क मायसेल्फ, गिफ्ट देने में ज्यादा अच्छा लगता या गिफ्ट लेने में? इट्स ऑलवेज द गिविंग, अ गिविंग ऑफ अ गिफ्ट. आप चूज करने जाएंगे, आप लेंगे, यू ऑलवेज सो हैप्पी बिकॉज गिविंग इज ह्यूमन नेचर. लेकिन वो हम अपनी बेसिक नेचर को आज थोड़ा सा भूल गए हैं. एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग हैप्पीनेस, giving love, giving peace, we are wanting asking happiness, for asking for love, asking for peace. So let's experiment this meditation together.
0: In fact, Sister Shivani, hum jo baat kar rahe the, wo ye thi ki jo impact tha. Aaj is puri baatcheet mein ye to samajh mein aaya ki kya process hai, kya kuch kaise hota hai, jo jisse hum you know, हमारा जो पूरा जितनी देर हम टेलीविजन के आगे होते हैं, क्योंकि ये जो हमने एग्जांपल्स लिए उसमें भी तो यही हुआ, जितने दिन तक वो टीवी पर दिखते रहे, जितने दिन तक वो चर्चा में रहा, उतने दिन तक वो हम पे हावी रहा. उसके इमीडिएटली बाद हमें याद भी नहीं रहा,
1: कुछ और आ गया ना तब.
0: हाँ, सो इट मीन्स इट टुक ओवर ना.
1: सो दैट मीन्स मेरी अपनी क्रिएटिविटी क्या थी. इफ यू रियली फेल्ट फॉर व्हाट हैड हैपेंड, तो टीवी से वो हट भी गई न्यूज, आपकी फिर भी वो रहना ही चाहिए थी ना, वट एवर यू थॉट, वो तो फिनिश्ड. सो इट्स नॉट रियली दैट यू फेल्ट इट, इट इज समवन एल्स वाज क्रिएटिंग योर इमोशंस फॉर यू दैट टाइम, एंड वो समवन एल्स चेंज्ड द टॉपिक, हमारा भी चेंज.
0: तो हमारी रैशनैलिटी खत्म हो चुकी होती है एक्चुअली.
1: वही, दैट्स व्हाट वी सेड, हमारी क्रिएटिविटी कि कौन सी थॉट्स क्रिएट करनी है, चूज करनी है, इट्स ओवर.
0: तो वी अंडरस्टूड कि शुरुआत में क्या होता है, देयर इज अ स्टेज वेयर वी आर स्टेबल, वी आर डिटैच्ड. हमने जो पूरा प्रोसेस देखा, और उसके बाद हमारा जो यू नो लोगों के ऊपर जो जजमेंटल होना कि ये ऐसा किसी भी चीज़ के लिए, एंड देन पूरी इमोशंस हमारे जो टेक ओवर करती है. ये तीन प्रोसेस हैं जब हम किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, बाहर ही किसी भी, और ये फिर मेरी हैबिट बनता जाता है, जजमेंटल होना, और फाइनली फिर उस सिचुएशन को अपने ऊपर हावी होने देना. इनसे अब काम कैसे करना, हम टेलीविजन के प्रोग्राम से ही जुड़े हुए चीज़ें करेंगे, सो दैट क्योंकि आप इस प्रोग्राम से भी जुड़े हुए हैं, तो उसको भी अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको कम ना होने दें. यू नो, आपको जो समझ में आ रहा है, जो एक्सेप्ट, मतलब आप ब्लाइंड, बार बार हम ये कहते हैं कि ब्लाइंड फेथ ना रखकर, इसीलिए अनुभव की बात कही जाती है,
1: एक्सपेरिमेंट.
0: हाँ, कि आपका एक्सपेरिमेंट और फिर आपका एक्सपीरियंस जो होगा उसके साथ वो कैसा होगा, वही आपको तय करवाएगा. आपके मन में कोई बात आ रही है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमें फोन भी कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999344666 9873666555 हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज हमने मेडिटेशन के उस एस्पेक्ट को भी समझा जो कलेक्टिव होती है और जो सिर्फ मुझसे जुड़ी नहीं हो सकती, लोगों से भी जुड़ सकती है, विश्व से जुड़ सकती है। तो आज सिस्टर शिवानी चलते चलते चाहेंगे कि थोड़ा सा अनुभव वो करें।
1: आज दिन तक हमने मेडिटेशन किया, आज उसमें एक नया एस्पेक्ट देखते कि हाउ आई कैन क्रिएट वाइब्रेशंस ऑफ पीस एंड सेंड इट आउट टू द वर्ल्ड। तो इसमें कोई हमें स्पेसिफिकली लोगों के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन आई क्रिएट वो शांति की संकल्प, वो अनुभूति, एंड देन आई सेंड इट आउट टू द वर्ल्ड। डोंट सिट एंड थिंक कि वो किस तक पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, नहीं, जस्ट सेंड इट आउट विद द प्योर फीलिंग एंड अ प्योर इंटेंशन एंड इट विल रीच आउट टू देम। लेट्स सिट कंफर्टेबली। बाहर की रोजमर्रा की बातों से अपनी बुद्धि को हटाते हुए अपने ऊपर लेकर आते हैं। आई दैट पावरफुल बींग जो हर संकल्प क्रिएट करता है। आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट। आई एम अ पीसफुल बींग। शांति मेरा अपना स्वभाव, मेरी अपनी नेचर है। ये शांति की वाइब्रेशंस, ये शांति की शक्ति मुझसे निकलकर सारे विश्व तक पहुंच रही है। देखने का प्रयास करें वाइब्रेशंस ऑफ पीस। इट्स लाइक अ लेजर बीम मुझसे निकल सारे विश्व तक पहुंच रही है, विश्व की एक एक आत्मा तक पहुंच रही है। ओम शांति।
0: ओम शांति। थैंक यू सो मच। अब आपसे भी विदा लेंगे, लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि आने वाली कड़ियों में बहुत सी और बातें हम समझ पाएंगे। ओम शांति।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, जिसका सही जवाब देने वाले भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छायाचित्र। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है waTANKARAAG@gmail.com और RADIOAZADHIND@gmail.com। आप हमें SMS के जरिए भी जवाब भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7771908908। नंबर एक बार फिर सुन ले, 7771908908। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन, लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

छोटा सा मंत्र मैं आपको देता हूँ, इसे आप अपने हृदय में अंकित कर लें और अपनी हर सांस में उसे अभिव्यक्त करें। ये मंत्र है, करो या मरो। अपने इस प्रयास में हम या तो स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे या फिर जान दे देंगे। इस वक्तव्य के साथ 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आर पार की उस लड़ाई का उद्घोष किया जिसे आज हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये गांधी जी की एक शस्त्रविहीन युद्ध की अद्भुत खुली घोषणा थी। इसके साथ ही 9 अगस्त 1942 को पूरे देश में आरंभ हो गई ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध वो निर्णायक लड़ाई जिसने अंग्रेजों को इस देश से खदेड़कर अपनी आजादी का सूर्य गढ़ा। द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों को पराधीन भारत ने एक अवसर की तरह देखा और ब्रिटिश साम्राज्य के समक्ष पूर्ण स्वराज की मांग पुरजोर तरीके से रखी। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र हारने लगे थे और ब्रिटेन पर दबाव बन रहा था कि वो भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करे। इसी उद्देश्य से स्टेफर्ड क्रिप्स 23 मार्च 1942 को भारत की किस्मत का पुलिंदा अपनी अटैची में लिए दिल्ली पहुंचे, लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग पर भारत के समक्ष जो प्रस्ताव उन्होंने रखे वो बेहद निराशाजनक थे। इस प्रस्ताव के सबसे आपत्तिजनक बिंदु ये थे कि ब्रिटिश सत्ता भारत की सुरक्षा अपने हाथों में रखना चाहती थी और गवर्नर जनरल के वीटो के अधिकार को भी वो बनाए रखने के पक्ष में थी। इसके साथ ही भारतीय एकता की जमीन में फूट डालते हुए ये प्रावधान दे रही थी कि भारत के जो प्रांत संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है उन्हें भारतीय संघ के समान ही पूर्ण स्वराज का दर्जा प्रदान किया जाएगा। अंग्रेजों की इस कुटिलता से भारत की आशाओं को गहरा धक्का पहुंचा और भारतीय प्रतिनिधियों ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। गांधी जी ने कहा कि ये प्रस्ताव एक दिवालिया होने वाले बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। इसी पृष्ठभूमि पर आंदोलन की रणनीति तैयार हुई और 14 जुलाई 1942 को वर्धा अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इस आंदोलन के लिए 9 अगस्त की तारीख चुनी गई जिसे देश भर में प्रतिवर्ष काकोरी कांड स्मृति दिवस के रूप में मनाने की परंपरा सरदार भगत सिंह ने शुरू की थी। 1925 की 9 अगस्त ही वो तारीख थी जब ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलटने के लिए पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के 10 वीर क्रांतिकारियों ने काकोरी कांड को अंजाम दिया था। इसी ऐतिहासिक तारीख 9 अगस्त को एक बार फिर महासमर का शंखनाद होना था। 8 अगस्त 1942 को रात 10 बजे गांधी जी ने बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में अंग्रेजों को बलपूर्वक चेतावनी दी कि या तो इच्छापूर्वक भारत का शासन भारतवासियों के हाथों में सौंपकर यहां से चले जाओ, अन्यथा तुम्हें संपूर्ण भारत की उभरती हुई शक्ति का सामना करना पड़ेगा। इस तरह ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध भारतीयों की एक खुली लड़ाई की रणभेरी बज उठी।

अगस्त की बंबई की हलचलों को लेकर सरकार अत्यधिक चौकन्नी थी। ब्रिटिश सत्ता ने रात 12 बजे ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर अलग अलग जेलों में डाल दिया। गिरफ्तारी से कुछ पहले ही सारे शहर के टेलीफोन तार काट दिए गए ताकि हंगामा न हो। गांधी जी के साथ भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को यरवदा पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में और अन्य नेताओं को अहमदनगर के किले में नजरबंद कर दिया गया। 8 अगस्त को ही ये घोषणा हो चुकी थी कि 9 अगस्त को सुबह ग्वालिया टैंक के मैदान में राष्ट्रीय झंडे को सलामी दी जाएगी। सुबह उठते ही जब जनता ने नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार सुना तो सभी लोग ग्वालिया टैंक मैदान की ओर चल पड़े। वहां पहुंचे तो मालूम हुआ कि सारे मैदान पर पुलिस ने कब्जा कर लिया है। पुलिस की परवाह न करते हुए जनता निर्भय और निसंकोच सभा स्थल में एकत्रित हो गई। सभी मुख्य नेताओं के जेल चले जाने के बाद नेतृत्व के अभाव में लोगों के बीच से ही नेतृत्व उभरा। एक मोटर आई जिसमें भूला भाई देसाई के सुपुत्र सवार थे। उन्होंने आते ही राष्ट्रीय झंडा अपने हाथ में ले लिया। इस पर एक यूरोपियन सार्जेंट ने आगे बढ़कर ऊंचे स्वर में कहा, इस मैदान पर अब पुलिस और मिलिट्री का कब्जा है, तुम सब यहाँ से हट जाओ वरना आंसू गैस का प्रयोग किया जाएगा। समारोह की संचालिका थीं अरुणा आसफ अली। उन्होंने छोटे लड़के लड़कियों को वहां से दूर हटा दिया और स्वयं भाषण देना प्रारंभ किया। इस पर पुलिस के सिपाही आंसू गैस के थैले लेकर सभा स्थल पर पहुंच गए। तमाम विरोध और अफरा तफरी के बीच अरुणा आसफ अली ने ग्वालिया टैंक मैदान में झंडा फहराकर आंदोलन की शुरुआत कर दी, जिसने देशवासियों के मन को उत्साह से भर दिया। जनता को नेताओं की ओर से पहले ही समझाइश दी गई थी कि आंसू गैस छोड़ने पर जमीन पर लेट जाना चाहिए। लोगों ने वैसा ही किया। 2 मिनट तक सभी नीचे लेटे रहे, परंतु जैसे ही उठकर खड़े हुए आंसू गैस फिर छोड़ दी गई। लोग फिर से लेट गए। तब पुलिस ने सबको लाठियों से मारना शुरू कर दिया। बहुत से लोग घायल हुए। दिन के 10 बजते सारा बंबई शहर खुले विद्रोह का अखाड़ा बन चुका था। जनता इस अत्याचार से विक्षुब्ध हो गई। लोगों ने सरकारी संपत्तियों पर हमला किया, रेलवे पटरियों को उखाड़ दिया, डाक और तार व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया और सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराने लगे। देश की जनता ब्रिटिश सत्ता के आक्रमण का उत्तर देने के लिए मैदान में उतर आई थी, क्योंकि करो या मरो का संदेश देश के कोने कोने में गूंज उठा था। जन मन में प्रतिरोध इतना तेज था कि देश के कई भाग, जैसे संयुक्त प्रांत में बलिया, बंगाल में तामलुक, महाराष्ट्र में सतारा, कर्नाटक में धारवाड़ और उड़ीसा में तालचेर और बालासोर में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई। पहली अस्थायी सरकार बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी। सतारा में विद्रोह का नेतृत्व वाईवी चौहान और नाना पाटिल ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की चिंगारी जो बंबई से उठी तो पूरे देश में फैल गई। सारा देश एक धधकता हुआ ज्वालामुखी बन गया।

अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये ललकार जैसे धरती से उठकर आसमान तक पहुंच रही थी। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने तैयार किया था, जिन्होंने बंबई के मेयर के रूप में भी काम किया। ये वही यूसुफ मेहर अली हैं जिन्होंने साइमन गो बैक के नारे को भी गढ़ा था। इस अगस्त क्रांति में अनगिनत नेता जेल की सलाखों के पीछे थे और जो बाहर थे वो भूमिगत रहते हुए इसे गति दे रहे थे। जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, एस एम जोशी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे कई नेता लगभग पूरे आंदोलन के दौरान भूमिगत रहते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों को हवा देते रहे। सन 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ, उस समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल में नजरबंद थे। जब सरकार की ओर से हिंसक कार्रवाई शुरू हुई तब जयप्रकाश जी से सहा नहीं गया और 11 नवंबर 1942 को दीपावली की अंधेरी रात में 5 अन्य सहयोगियों के साथ वो जेल की दीवार फांदकर भाग निकले। बाहर पहले से ही मोटर की व्यवस्था थी। पहले मोटर से और फिर पैदल रांची गया होते हुए बंबई पहुंचकर वो आंदोलन में जुट गए। 1943 के मई महीने में नेपाल की तराई में राष्ट्रीय सेना तैयार करते हुए वो और उनके कई साथी गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिए गए। परंतु वहां भी वो देर तक नहीं टिके। योजना अनुसार रात के समय बहुत से नवयुवकों ने जेल पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया, जेल का फाटक तोड़ डाला और जयप्रकाश जी अपने सहयोगियों के साथ बाहर निकल गए। उस समय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी उनके साथ थे। इस प्रकार 2 वर्ष तक लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने सरकार की सारी शक्ति को अंगूठा दिखाकर इस क्रांति का अभूतपूर्व संचालन किया। इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी भी बहुत महत्वपूर्ण रही। ब्रिटिश सरकार ने भूमिगत अरुणा आसफ अली को पकड़वाने वाले को 5,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा कर रखी थी। उधर उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने सहयोगियों के साथ 14 अगस्त 1942 को एक खुफिया रेडियो प्रारंभ किया था। ये रेडियो लगभग हर दिन अपनी जगह बदलता था ताकि अंग्रेज अधिकारी उसे पकड़ न सकें। 3 महीने तक प्रसारण के बाद अंततः अंग्रेज सरकार ने उषा मेहता और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। लाखों युवाओं ने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। 1942 के अंत तक लगभग 60,000 से अधिक लोग जेल में डाल दिए गए और कई हजार लोग मारे गए। बंगाल के तामलुक में 73 वर्षीय मातंगनी हाजरा, असम के गोहपुर में 17 वर्षीय कनकलता बरुआ, बिहार के पटना में 7 युवा छात्र, ऐसे हजारों लोग प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से मारे गए। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन से संबंधित समाचारों को प्रकाशित करने पर पाबंदी लगा दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन सन 1857 के बाद दूसरा सबसे बड़ा जन आंदोलन साबित हुआ। 1943 के अंत तक इस आंदोलन ने भारत को संगठित कर दिया था और अंततः ब्रिटिश सरकार ने संकेत दे दिया कि सत्ता का हस्तांतरण कर अब उसे भारतीयों के हाथ में सौंपा जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसी खुली लड़ाई थी जिसके बाद भारतीयों ने पहली बार स्वाधीनता की आहट को महसूस किया था। इस आंदोलन ने अंततः भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया।

0: आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए आइए हम गाएं अपना राष्ट्रगान। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: www.rashtragaan.in पर विजिट करें और अपना विवरण दर्ज करें
0: और बसती हुई धुन के साथ खड़े होकर के बड़े गर्व के साथ गाइए अपने राष्ट्रगान को और इसे अपलोड करें।
1: आप इसका ई प्रमाण पत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं। संकलित किए गए वीडियो का प्रसारण 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से होगा।
0: तो फिर देर किस बात की, तुरंत विजिट कीजिए www.rashtragaan.in पर और शामिल हो जाइए आजादी के अमृत महोत्सव में।
1: याद रखिए, वीडियो अपलोड करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त रात 12 बजे तक। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और श्रोताओं, अब वक्त है आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के विजेताओं के नाम जानने का। हमारा सवाल था कि अरुणा आसफ अली ने 9 अगस्त 1942 को मुंबई के किस मैदान में झंडा फहराया था। इसका सही जवाब है ग्वालिया टैंक मैदान, जो अब अगस्त क्रांति मैदान कहलाता है। यूं तो कई श्रोताओं ने हमें सही जवाब लिख भेजा है, लेकिन लकी ड्रॉ द्वारा चुने गए हमारे 4 भाग्यशाली विजेता हैं जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक गुर्जर, दिल्ली से विष्णुदत्त शर्मा, बालाघाट से शीला पटले और सागर से सतीश पांडे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र। और श्रोताओं, अब बारी है आज के सवाल की। आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हमारा आज का सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने खुफिया रेडियो प्रारंभ किया था। सवाल एक बार फिर सुन लें। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने खुफिया रेडियो प्रारंभ किया था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है wataankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। आप हमें SMS के जरिए भी जवाब भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7771908908। नंबर एक बार फिर सुन लें, 7771908908। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।
2: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि आपण ट्यून केला आहे रेडिओ मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टच।

0: बचपन से मुझे दो चीजों का आकर्षण रहा है, बंगाल की क्रांति का और हिमालय की शांति का। उस वक्त देश गुलाम था, परतंत्र देश में यते मही स्वराज्य की साधना का आरंभ कहाँ से हो सकता है। परदेशियों को अपने इस मुल्क में से हटाना चाहिए, यह लगन बचपन से थी। साधन शुद्धि का विचार क्षितिज पर नहीं आया था, इसलिए बंगाल की क्रांति साधन हो जाती थी। साथ साथ हिमालय की पुकार भी जोरदार थी। शंकराचार्य ज्ञानेश्वर चैन से बैठने नहीं देते थे, द्वंद्व चलता रहता था। आखिर ब्रह्म दर्शन की उत्कट अभिलाषा की विजय हुई और ब्रह्म विद्या के नाम पर 1916 में गृह त्याग करके काशी पहुंचा। परंतु वहां भी द्वंद्व ने साथ नहीं छोड़ा। हिमालय जाऊं या बंगाल, मन में द्विधा थी। पांव दोनों ओर खींचे जाते थे।
1: ईश्वर से ये द्विधा कहां छिपी थी? काशी के हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के निमित्त स्वराज युद्ध का एक महासेनानी गांधी वहां पहुंचा और उसने विदेशी शासनकर्ता पर ऐसे प्रखर प्रहार किए कि सारा हिंदुस्तान हिल उठा। विनोबा ने उस ऐतिहासिक भाषण की रिपोर्ट अखबारों में पढ़ी और उसे लगा कि ये कोई विशेष व्यक्ति है। तुरंत ही लंबी प्रश्नावली सहित गांधी जी को पत्र लिखा। उनका उत्तर मिला।
2: आपके प्रश्नों का जवाब पत्रों द्वारा नहीं दिया जा सकता, यहाँ आइए, चर्चा भी होगी और हमारा जीवन भी देखने को मिलेगा।
0: हिमालय और बंगाल दोनों छूट गए और वे पांव बढ़े साबरमती की ओर, बापू के चरणों में, जहां बंगाल की क्रांति और हिमालय की शांति दोनों का दर्शन हुआ और मेरी दोनों इच्छाएं पूरी हो गई।
1: १९१६ की सातवीं जून प्रातःकाल की मंगल बेला अहमदाबाद के कोचरज आश्रम में बंगाल की क्रांति और हिमालय की शांति का सपना देखने वाला युवक विनायक गांधी जी के आश्रम में पहुंचा। गांधी जी कहाँ है? पूछते पूछते वो गांधी जी के पास पहुंचे तो देखा कि वे बैठे बैठे सब्जी काट रहे हैं। इस पर विनोबा कहते हैं,
0: बापू के प्रथम दर्शन में ही मुझे श्रम का पाठ मिला। बापू ने सब्जी काटते हुए ही मेरे निजी जीवन के बारे में पूछताछ की, फिर कहा,
2: यदि तुम्हें यहाँ रहन सहन अच्छा लगता हो और अपना जीवन तुम सेवा कार्य में लगाना चाहते हो तो यहाँ रहो, मुझे उससे खुशी होगी। लेकिन तुम बहुत दुर्बल दिखते हो। आत्मज्ञानी साधारणतः शरीर से कमजोर रहते हैं, परंतु तुम तो बीमार दिखते हो। आत्मज्ञानी कभी बीमार नहीं पड़ते।
0: बापू से मुझे ये दूसरा पाठ मिला। बापू की यह बात मैं कभी भूल नहीं सकता, रोग होना योग की कमी है। सच्चा योगी कभी रोगी नहीं हो सकता।
1: विनोबा सत्याग्रह आश्रम में जब पहुंचे उस समय शारीरिक श्रम की उन्हें इतनी आदत नहीं थी और आता भी नहीं था। कभी कुछ खास काम किया ही नहीं था, उसमें रुचि भी नहीं थी। परंतु आश्रम में प्रवेश करते ही प्रत्यक्ष बोध पाठ मिला। सब्जी काटते समय पहले दिन जो बापू से बात हुई सो हुई, उसके बाद सिर्फ काम की बातें होती थी। बापू को मालूम था कि इस लड़के में क्या क्या गुण भरे हैं, लेकिन दूसरे लोगों के लिए तो वो एक सामान्य व्यक्ति था। एक दिन बापू किसी से कह रहे थे,
2: यह तो गौण भाषा है।
0: नहीं, यह भक्ति की भाषा है।
2: बिल्कुल सही है तुम्हारी बात, ज्ञान की भाषा और भक्ति की भाषा।
1: ये साधारण सा जड़ दिखने वाला आदमी सब कुछ समझता है। तब से सब लोग विनोबा की फिक्र करने लगे और लोगों ने उनसे संपर्क बढ़ाना भी शुरू किया। देह की नश्वरता और आत्मा की अमरता की गीता संदेश को आत्मसात करने वाला विनायक आश्रम में आते ही विनोबा बन गया। उसकी संत प्रकृति देखकर मराठी ढंग पर बापू ने ही उसके विनू नाम के पीछे बा लगाकर विनोबा कर दिया। विनायक विनोबा नाम पाकर बापू के आश्रम में रहते थे। साबरमती के किनारे स्वराज्य के सैनिकों की कड़ी साधना चल रही थी। बापू के चरणों में हिमालय पाने वाले विनोबा की भी कर्म ज्ञान और भक्ति की अखंड साधना चलती थी। एक दिन सुबह साबरमती नदी में विनोबा नहा रहे थे कि नहाते नहाते वे आगे बढ़ गए। देखते देखते वे नदी के प्रवाह में खींचने लगे। धरती से पांव हटते ही विनोबा वास्तविकता को पहचान लेते हैं। तैरना आता नहीं, किनारे पर से कोई मनुष्य बचा सकता नहीं, तेज धार में मुट्ठी भर हार्ड चाम को ढूंढना भी असंभव। लोगों ने देखा तो चिल्ला उठे, विनोबा डूब रहे हैं, कोई बचाओ बचाओ।
0: बापू को कहना कि विनोबा जाता है, आत्मा अमर है, देह नश्वर है, आत्मा अमर है, देह नश्वर है, देह तो घसीटा हुआ जा रहा है, परंतु मेरे तो मुख राम नाम दूसरा ना कोई, आत्मा अमर है, देह नश्वर है।
1: ईश्वर इच्छा से पानी में बहते बहते बीच में एक छोटी सी टेकड़ी आ गई और घिसटता हुआ शरीर वहीं अटक गया। कालदूत फिर से एक बार कान में गुनगुनाकर चला गया, परंतु यहां तो न मृत्यु का डर है न जीवन की लोलुपता। यहां यू भी वाहवा है और वो भी वाहवा है। साबरमती के किनारे खड़े हुए डरे हुए आश्रमवासियों ने देखा और सुना कि टेकड़ी पर अटका हुआ शरीर एक ही वेद वचन बोल रहा है, देह नश्वर है, आत्मा अमर है,

0: उन दिनों आश्रम की बात है। आश्रम के प्रांगण में रोज सुबह शाम बापू के सानिध्य में प्रार्थना होती थी। इस प्रसंग को बताते हुए विनोबा कहते हैं,
1: बापू का ऐसा आग्रह था कि सब आश्रमवासी प्रार्थना में हाजिर रहें। प्रातः प्रार्थना में जिन्हें नींद आती थी उन्हें बापू का आदेश था कि वे खड़े खड़े प्रार्थना करें जिससे उनकी नींद खुल जाए। प्रार्थना में रोज मगन भाई गांधी सबकी हाजिरी लेते थे। जो हाजिर होता वे ओम बोलते थे। सबसे पहले बापू का नाम लिया जाता था। एक बार मगन भाई ने हाजिरी लेने के बाद कहा कि 15 लोग हाजिर हैं। इस पर मैंने तुरंत खड़े होकर कहा, प्रार्थना में 15 नहीं 14 लोग हाजिर हैं।
2: मगन भाई, विनोबा गणितज्ञ है, जरा फिर से गिन लो। 15 भाई विनोबा, मगन भाई तो कह रहे हैं कि 15 थे और 15 ही है। क्यों विनोबा, क्या रहस्य है?
1: बापूजी, सदेह तो 15 लोग हाजिर हैं, परंतु जिनको हाजिरी लेनी है उनका मन हाजिरी लेने में होने से वे देह से प्रार्थना में हाजिर होते हुए भी मन से तो गैर हाजिर है ना। इसलिए मैंने कहा कि प्रार्थना में 15 नहीं 14 हाजिर हैं। परंतु बापू, ऐसी हाजिरी लेने का क्या अर्थ है?
2: एक तो वे काम करते हैं तो कर्म ही प्रार्थना हो गई, और दूसरा जब अपना नाम लिया जाता है तब हम ओम में जवाब देते हैं। उसका अर्थ इतना ही है कि हम उस वक्त जागृत होकर भगवान से कहते हैं कि प्रभु, तुम्हारे दरबार में मैं मन सहित हाजिर हूँ।
1: चिंतन मनन प्रधान ईश्वर आराधना में तमोगुण का डर रहता है। तमोगुण में जड़ता, आलस्य, बेजवाबदारी और स्वच्छंदता आती है। इसलिए प्रार्थना में निरंतर जागृति चाहिए। विवेकानंद का एक प्रसंग है। प्रार्थना में एक बार उन्होंने अपने शिष्यों को नहीं देखा। तब से उन्होंने नियम बनाया कि गैर हाजिर शिष्यों को अपनी भिक्षा खुद मांगनी होगी। लोगों के समक्ष जाने में साधक को जागृत रहना पड़ता है। इस तरह से उन्होंने शिष्यों के तमोगुण को दूर किया। प्रार्थना में तमोगुण ना रहे इसकी सावधानी रखनी पड़ती है।
0: सामान्यतः विनोबा स्थूल बाह्य प्रतिज्ञाओं के विरुद्ध है। वे खुद तो कभी ऐसी प्रतिज्ञा करवाते नहीं हैं। फिर भी वे मानते हैं कि प्रतिज्ञा ऊपर से लादी नहीं जानी चाहिए, अंदर से सहज भाव से आनी चाहिए। आश्रम के साधक लोग अलग अलग प्रकार के व्रत लेते थे, कोई अस्वाद व्रत का तो कोई अपरिग्रह व्रत का। बापू का जोर एकादश व्रत पर था, जिनका कि नित्य प्रार्थना में पारायण होता था। एक दफा 4-5-10 लोग चर्चा करने बैठ गए कि व्रत पालन का पूरा प्रयत्न करना चाहिए, व्रत लेने की क्या जरूरत है। विनोबा ने कहा,
1: मुझे लगता है कि व्रत लेने से अगर चित्त का बोझ हल्का होता हो तो समझना चाहिए कि व्रत लेना जरूरी अथवा उचित था। परंतु व्रत के कारण सिर अगर भार से लद जाता हो तो ऐसे व्रत की जरूरत नहीं है। ऐसी प्रतिज्ञा उन्नति का साधन नहीं हो सकती।
2: मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता था, उसमें सफलता भी मिलती थी, असफलता भी मिलती थी। साधक की जैसी दशा होती है वैसी ही मेरी भी थी। परंतु जब से मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया तब से मानो मुझे एक उत्तम रास्ता ही मिल गया। रास्ता उत्तम हो तो मोटर वाला निश्चिंत होकर अपनी मोटर चला ले जाता है, वैसे ही मेरे लिए एक रास्ता हो गया और वह व्रत मेरे लिए एक लक्ष्य बन गया।

0: आरंभ में बापू का आश्रम कोचरज में था, बाद में साबरमती के किनारे नए सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुई। उस आश्रम के एक ओर शमशान था और दूसरी ओर जेल थी, और सामने खड़ी थी कपड़े की मिल। रोज सवेरे चिमनियों से धुआं निकलता, मानो धूम्रपान शुरू हुआ। ये देखकर बापू कहते थे,
1: हमको इसे टक्कर लेनी है। शत्रु सेना सामने खड़ी है और बगल में शमशान खड़ा है, जिसके दर्शन से परलोक चिंतन की जागृति रहती है कि रहना नहीं देश वीराना है। हम कोई गुजराती नहीं है, हम तो उस देश के रहने वाले हैं जहाँ से हमको काम करने के लिए गुजरात भेजा गया। बाकी अपना देश दूसरा है, इतना याद रखकर काम करना है, और समाज की ओर से कष्ट सहन करने पड़े तो भी समाज से प्रेम करना है, यह दिखाने के लिए कि अपनी दूसरी ओर यह जेल है, यह जेल अपना घर है।
0: कई बार आश्रम मंडली खुले में बैठकर कुछ खाती और उधर नदी के उस पार शमशान में दो चार शव जलते हो ऐसा दृश्य दिख पड़ता था। विनोबा को ये बहुत अच्छा लगता था। एक बार प्रार्थना के बाद प्रवचन में विनोबा ने कहा,
2: बुद्ध भगवान से किसी ने पूछा कि खाने के लिए उत्तम स्थान कौन सा है, तो गजब का जवाब दिया उन्होंने, शमशान। तात्पर्य यह कि खाते समय भी यह बात याद रखी जाए कि अपनी गति वही है जो सामने दिख रही है। तो फिर जैसे कोई प्रयोगशाला में प्रयोग चलता हो वैसे नपातुला खाया जाएगा। भोजन विज्ञान का प्रयोग बनेगा, जितनी भूख होगी उतना ही खाया जाएगा। आने वाला कोई भी क्षण अपने पंख पर मृत्यु को चढ़ाकर आ सकता है।
0: ये सब देखकर विनोबा के मित्र श्री गोपाल राव काले कहते हैं कि विनोबा के लिए जिंदगी भर वर्तमान क्षण ही अंतिम क्षण रहा है। प्रार्थना के पहले बापू घुमा करते थे, घूमकर लौटने के बाद प्रार्थना होती थी, फिर थोड़ी चर्चाएं होती थी और फिर सब अपने अपने काम पर चले जाते थे। उन दिनों बापू बहुत बार विनोबा से कहते थे,
1: देखो विनोबा, हमको गांव गांव में फैलना है, इसलिए यहां मैं जामन बनाने का काम कर रहा हूं।
2: मैं समझ गया था कि बापू अच्छा जामन बनाकर उसको समाज रूपी दूध में मिलाकर सारे समाज को बापू दही बनाना चाहते थे। इस पर मैंने बापू से कहा कि जामन यदि अलग कटोरे में ही पड़ा रहे तो वह खट्टा हो जाएगा और निकम्मा हो जाएगा, जैसे गुफा के मुनि का होता है। कहीं कोई छोटा सा बच्चा रो दिया तो उसकी समाधि टूट जाएगी, इसलिए जामन को दूध में मिलाना ही चाहिए। मोटे तौर पर आध्यात्मिक गुणों का विकास समाज में रहकर ही होता है।

0: साबरमती आश्रम के आरंभ के दिन थे। गांधी जी के आकर्षण से अनेक नर रत्न आश्रम में इकट्ठे हुए थे। विनोबा, काका साहब, किशोरलाल भाई तो जाने हुए रत्न थे। एक दफा गर्मी के दिनों में छुट्टियों में उस शाला के शिक्षक और विद्यार्थियों ने पदयात्रा करते हुए आबू जाने का तय किया। पदयात्रा के अनुभवी और प्रेमी दो ही शिक्षक थे। एक थे हिमालय में सैकड़ों मील की यात्रा करने वाले श्री काका साहब और दूसरे थे महाराष्ट्र में पदयात्रा करके घूमने वाले श्री विनोबा। सबने मिलकर इस पदयात्रा का नेतृत्व विनोबा को सौंपा। गांधी जी ने पदयात्रियों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि कभी भी निश्चित मील से कम प्रवास नहीं करना। ये आदेश आरंभ में थोड़ा कठिन लगा। साबरमती से पैदल चलकर सब आबू पहुंचे। वहां प्रसिद्ध जैन मंदिर देखकर सब वापस लौटे। उस वक्त पदयात्रियों की छोटी छोटी टोलियां बनी और अंतिम टोली में तीन व्यक्ति रहे, विनोबा जी, श्री काका साहब और विलासपुर के श्री रामानंद जी।
1: हम तीनों पालनपुर दिशा के रास्ते से चल रहे थे। साधारण तौर पर रेल की पटरी के साथ साथ चलने का हमने तय किया था और अब तो अहमदाबाद के नजदीक पहुंच भी रहे थे। उस रात को साबरमती स्टेशन पर पहुंच जाने की कल्पना थी। संध्या काल को एक छोटे से स्टेशन पर पहुंचे और स्टेशन मास्टर से पूछ लिया कि यहाँ से साबरमती स्टेशन कितना दूर है। उनसे ही मांग कर पानी पी लिया और फिर आगे बढ़े।
2: बहुत दिनों का सहप्रवास था, शाम भी ढल चुकी थी, इसलिए बातचीत बंद हुई और मौन यात्रा चालू हो गई। मैं कुछ आगे चल रहा था। विनोबा और काका साहब बीच बीच में थोड़ा बोल लेते थे और साथ साथ चलते थे। इतने में एक छोटा सा पुल आया। उस पुल पर पथिकों के चलने के लिए बगल से कोई रास्ता नहीं था। दो पार्टियों के बीच में मिट्टी भी नहीं थी। एक एक फीट के अंतर पर वे पट्टियाँ थी। एक पटिया से दूसरी पटिया पर ही पाँव रख सकते थे। दोनों पटियों के बीच से नदी का पानी भी दिखता था। पुल पर चढ़ गए। आधी दूर तक पहुंचे होंगे कि पीछे रेलगाड़ी की आवाज सुनाई देने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो एक रेलवे इंजन डब्बों के साथ काल पुरुष की तरह बड़ा आ रहा था। मैं सबसे आगे था, फिर काका साहब और आखिर में विनोबा। गाड़ी को देखते ही सब दौड़ने लगे। पुल पर से नीचे कूदना भी संभव नहीं था। बगल में उतर पड़े यह भी संभव नहीं था। उस स्टेशन मास्टर ने बताया भी नहीं कि इस वक्त कोई ट्रेन आने वाली है। वह जानता था कि हम लोग रेल के रास्ते से जाने वाले हैं, परंतु ईश्वर को कसौटी करनी थी तो वह भी कहना भूल गया।
3: रामानंद जी तो खूब आगे थे, अतः पुल पार करके नीचे उतर गए। मैं भी तीव्र गति से दौड़ने लगा। पीछे कालदूत ही साक्षात जो आ रहा था। विनोबा भी दौड़ रहे थे, परंतु उनकी आंखें कमजोर थी। चश्मा और चप्पल न पहनने का उनका व्रत था। दौड़ते दौड़ते दोनों पटियों के बीच कहीं पांव फिसल गया तो गाड़ी पीछे अपने क्रूर पंजों में दबाने को आ ही रही थी, परंतु कौन क्या कर सकता था। मैं तो बच गया। आगे पहुंचकर एक तरफ उतर गया और धड़कते हुए दिल से आने वाले उन भयंकर क्षणों का इंतजार करने लगा। मैंने देखा कि विनोबा दौड़ते आ रहे हैं और इंजन उनके नजदीक पहुंच गया है। दोनों मित्रों के हृदय पर सवा सवा मन के बोझिले पत्थर मानो लद गए थे। संध्या का समय, चारों ओर अंधेरा। विनोबा के नजदीक जाकर मैं चिल्ला उठा, विनोबा जंप टू द लेफ्ट, जंप टू द लेफ्ट। अंधेरे में विनोबा दिखते नहीं थे। मेरी आवाज सुनकर विनोबा बाई तरफ कूदे और मैंने उनको अपनी बाहों में थाम लिया। दो चार क्षणों में ही वह कालदूत धड़धड़ाता हुआ

0: आगे बढ़ गया। जिस वक्त विनोबा को मैंने खींचा, उस वक्त मुझे रेलगाड़ी की आवाज के साथ साथ विनोबा के मुख से निकलता हुआ प्रभु नाम भी सुनाई दिया।
1: मुझे पटिया दिखाई नहीं दे रही थी, परंतु मुझे मालूम था कि ये पटिया समानांतर होती हैं, इसलिए दौड़ने के लिए मैंने एक ताल तय कर लिया। बचपन में मैंने वैसी कोशिश की थी तो भगवान का नाम लेते लेते उसी ताल पर दौड़ने लगा। इंजन एकदम नजदीक आ गया है ये मैं समझ गया था। काका साहब दिखते नहीं थे, परंतु आवाज सुनकर मैं एकदम बाई ओर कूद पड़ा।
0: मेरी बाहों में विनोबा के आने पर मुझको भी लगा कि परमेश्वर ने ही इनको बचाकर प्रसाद रूप में लौटाया है। उस वक्त तो सबके दिल भी भरे हुए थे, ईश्वर का कैसे उपकार माने, कोई कुछ बोला नहीं। रात को आश्रम पहुंचे और सो गए। दूसरे दिन मैंने बापू को सारी घटना सुनाई और कहा, अब तो विनोबा को चप्पल और चश्मा पहनने की आज्ञा दे ही दीजिए बापू। आज भी जब वो प्रसंग याद आता है, प्राण हाथों में लेकर हमारा दौड़ना, विनोबा को हाथ खींचकर पकड़ना, गाड़ी की धड़धड़ आवाज और उन सब के बीच भी विनोबा के मुंह से राम नाम सुनाई देना, ये सब नजरों के सामने आता है।
2: देह नश्वर है और आत्मा अमर है, ये बातें तो लोग विनोबा के मुंह से बचपन से सुनते आए हैं, परंतु जब साक्षात मृत्यु पीछे से आती हो, तब जीवन और मृत्यु के आलिंगन में से गुजरते समय भी विनोबा के मुंह से सुनाई दिया राम नाम, मानो गीता मूर्तिमंत हो आई हो। ठंडे कलेजे से जीवन की परिपूर्ण सुरक्षा में राम नाम बहुत सुनने को मिलता है, परंतु यहां तो मरणांगन में भी अरे अरे मर गया बचाओ बचाओ के बदले ईश्वर की इच्छा में अडिग श्रद्धा दिखाने वाले नाम स्मरण, यहां यू भी बहावा है और यू भी वहावा है। पुरुषार्थ 100% जीवन का, परंतु मालिक का चाहा जो कुछ भी हो उसमें अपने दिल की पूरी खुशी।
3: 1920 में नागपुर कांग्रेस के बाद मेरे आग्रह से गांधी जी ने वर्धा में एक आश्रम खोला। सारे भारत की दृष्टि से अहमदाबाद एक तरफ पड़ जाता था। भारत के मध्य में ऐसी महान प्रवृत्ति का कोई केंद्र हो, इस दृष्टि से महाराष्ट्र का वर्धा क्षेत्र पसंद किया गया और वर्धा नगर से 4 मील की दूरी पर सेवाग्राम आश्रम की स्थापना हुई। बापू ने विनोबा को उस आश्रम की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। 1926 में चैत्र मास के प्रथम दिवस पर विनोबा जी वर्धा पहुंचे।
2: 21 से 38 तक विनोबा जी सेवाग्राम में रहे, बाद में पवनार में उनका परमधाम आश्रम बना। इतने साल तक एक स्थान पर ही बैठे थे, परंतु चित्त से वे उन्मुक्त थे, किसी स्थान से चिपके हुए नहीं थे। वे कहते कि परमधाम यानी दुनिया का मध्य बिंदु, अपनी दुनिया का वो मध्य बिंदु ही रहने वाला था।
3: मेरे मानस में बहुत सी योजनाएं उठती है, परंतु उसका आधार आप बने तभी वे पूरी हो सकती है। लेकिन आपका क्या भरोसा, आज यहाँ है कल चले भी जा सकते हैं, आपके आधार पर कोई योजना नहीं बना सकता।
1: मैंने कहा, मेरे आधार पर योजना मत बनाइए, स्वतंत्र आधार पर बनाइए, मैं तो यहां हूं तब तक हूं।
2: जमनालाल जी का देहांत हो गया था। उस संवाद को याद करके विनोबा जी कहते हैं कि आज जमनालाल जी जीवित होते तो मैं पूछता, मुझे कह रहे थे कि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, कब तुम भाग जाओगे, अब आप ही कहां भाग गए, यहां तो सभी ने आपका भी भरोसा किया था, कि सब संस्थाओं के आप आधार है। आपने तो कभी छोड़ने की बात भी नहीं की थी, फिर सारा छोड़कर क्यों भाग गए?

0: जब तक बापू थे तब तक खुद होकर कभी स्थान छोड़ने का विचार मन में आया नहीं था। बापू की आज्ञा के बिना स्थान छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता था। चित्त की ऐसी वृत्ति हो जाने के कारण बापू के रहते कभी कोई चिंता ही नहीं थी, परंतु बापू के जाने के बाद देश की परिस्थिति देखकर बाहर निकलने की, स्थान छोड़ने की प्रेरणा हुई। बापू होते तो शायद इस आश्रम के बाहर कभी नहीं निकलता।
1: आश्रम के किसी लड़के ने विनोबा के पास जाकर जिद पकड़ी कि मेरे लिए कोई चित्र बना दीजिए। विनोबा ने बच्चे से पूछा कि किसका चित्र बनाना है। उत्तर में जवाब आया, मनुष्य का। और विनोबा ने स्लेट पर एक मनुष्य का चित्र बना दिया। पास में ही जानकी देवी बजाज खड़ी थी। स्लेट पर के मनुष्य का चित्र देखकर वे एकदम चौंक गई। अरे ये मनुष्य तो बापू है, कहकर जोर जोर से मदालसा को पुकारने लगी। मदालसा के पहुंचने तक विनोबा ने चित्र पहुंच डाला।
2: अरे रुको रुको, देखो इनको अपने पिता के स्थान पर बिठाया है, परंतु अभी दो क्षण पहले इस स्लेट पर बापू का चित्र बनाया था। मैं नाना कहती रही और इन्होंने पोंछ डाला।
3: बाबा आपने वह चित्र क्यों पोंछ डाला?
0: अरे ये तो स्लेट पर बनाया हुआ चित्र था। गांधी जी का चित्र बनाने के लिए यह थोड़ी ही किया था। यह छोटा लड़का जिद पकड़ कर बैठा था कि मनुष्य का चित्र बना दो, तो मनुष्य कहते ही मेरे सामने गांधी जी खड़े हो जाते हैं। सो मनुष्य का चित्र बनाते बनाते वह बापू का चित्र बन गया। अपने दुर्बल पांव से परंतु बापू के ही मार्ग पर चलने की मेरी कोशिश है।

0: श्रोत्यो, रेडिओ मनभावनच्या कार्यक्रमांबद्दल आपले अभिप्राय देण्यासाठी आम्हाला फोन करा 9284499433 ह्या क्रमांकावर, किंवा व्हॉट्सअप करा 9922337361 ह्या क्रमांकावर.
1: इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की. वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने. ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में. कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में. कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की.

0: तो आपे करता सोई रे साधो, तो आपे करता सोई। श्रोताओं, कबीर साहब मन की असीम और विराट क्षमताओं को प्रकट करते हुए कहते हैं, मन गोरख मन गोविंदो। यह जो तुम्हारा मन है, यह साधना के मार्ग पर चलता है, इंद्रियों को समेटता है, तो यही मन गोरख यानी महान सिद्ध योगी बन जाता है। और जब यही मन पूरी तरह शुद्ध होकर परमात्मा के प्रेम में विलीन हो जाता है, तो यही मन स्वयं गोविंद यानी साक्षात नारायण का रूप ले लेता है। मन ही अवघड़ होइ। और जब यह मन संसार के सारे पाखंडों, जाति पाति और सामाजिक बंधनों से मुक्त हो जाता है, तो यही मन अवघड़ यानी एक मस्त और आज़ाद अवधूत बन जाता है। तो इस मन को इस परम अवस्था तक कैसे पहुंचाया जाए? अगली पंक्ति में कबीर इसका रहस्य खोलते हैं। जे मन राखे जाता करी, जाता करी का अर्थ है जतन से, बहुत संभाल कर, सजगता के साथ पहरा देकर रखना। कबीर कहते हैं कि जो साधक अपने इस चंचल मन को विवेक के पहरे में जतन से सहज कर रख लेता है, इसे व्यर्थ के प्रपंचों में बिखरने नहीं देता, तो आपे करता सोई। वह मनुष्य स्वयं कर्ता यानी उस सृष्टि के रचयिता, उस परम पुरुष परमात्मा के स्वरूप ही हो जाता है। जीव और ब्रह्मा का भेद सदा के लिए समाप्त हो जाता है। अगर इसे हम दर्शन शास्त्र की दृष्टि से देखें, तो यह दोहा नाथ पंथ के योग और योगांत के सोहम अर्थात मैं वही हूँ के सिद्धांत का शिखर है। कबीर यहाँ समझा रहे हैं कि मन की बंधन का कारण और मन ही मोक्ष का द्वार भी हैं। जब तक मन बहिर्मुख है, वह वासना है। जब मन अंतर्मुखी हो जाता है, तो वह उपासना बन जाता है। गोरख गोविंद और अवघड़ असल में चेतना की अलग अलग उच्च अवस्थाएं हैं। कबीर का यह सूत्र हमें बाहरी कर्मकांडों से हटाकर सीधे आत्म साधना पर केंद्रित करता है। ईश्वर को कहीं बाहर मत ढूंढो, अपने ही मन को सहेज लो, वह स्वयं परमात्मा हो जाएगा। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपने मन की ताकत को पहचानिए। हम अपनी ही सोच से खुद को छोटा, कमजोर और लाचार मान बैठते हैं। हमारा मन 24 घंटे जिन व्यर्थ की चिंताओं में बिखरा रहता है, सोचिए अगर वही ऊर्जा हम अपने भीतर समेट लें, तो क्या अद्भुत घटित हो सकता है। आज कोशिश कीजिए इस मन को जाता करी यानी जतन से सहेजने की। जब भी मन किसी की बुराई में, ईर्ष्या में या हीन भावना में बिखरने लगे, तो इसे रोकिए, इसे शांत कीजिए और उस राम के महामंत्र को लगाइए जो मन की सारी कालिमा को धोकर इसे गोविंद बना देता है। जब आपका मन आपके वश में होगा, तो आपके जीवन में परम शांति और दिव्यता का अवतरण सहज ही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: रेडियो मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।
2: बात तथागता, तू त्या मई जे सामने शे त्याले भिडणारा, अस्तित्वना शोध लेणारा, विज्ञान माझे फायदानं शे त्याला गती देणारा, सत्य सत्य आणि सत्य शोधणारा, बट्टा जीवेसनी पैदास बनस चार गोष्टीस मातीन, धरणी पाणी आगीन वारा, ह्या यज्ञांमातल्या सत्यमझार जीवेसना ठाव दिखियस. जीव भये आणि जीवना उमेद भये. चितना ढिगारामझार संज्ञा यज्ञान संस्कार आखो यज्ञा या पठ्ठा मी सनी बनस मन या मन सगट या पाच गोष्टी स्थायी बनस जीवन शरीर. आता मेणबत्तीनच दाखा त्यामा उजिडवी शे आणि जीवबी या दोन्ही जवळ एक जीव होतस तव ती मेणबत्ती म्हणावस. पृथ्वी हाय तत्व बलतो मुद्दानं बट्टा अवयव एकमेकले चिटकी राहतस त्या पिरथी विनाभये. नाही ते नदीपूर मातला वडंगानागत गत राहती कवय तरी भेटवती अवयसनेबी सत्यागत्या तशीच होती. तेज अनागीन उभ्या ताकात देणाऱ्या गोष्टी जीवेस न जितं पण ह्या तेज ना भय आई हवा बलती मुद्दानी पलघडी जगाडस आणि जागाडस हरेक नाडी न सासले न सासणं निरोग पण हवानाच भय. नाही ते न साजात्याच सडी कॅन्सर रोग ना माईक हवाना बिगर हाय ज्ञान इज्ञान बठ्ठा सजीवेस ना गुंता वस लागू. माणूस जनावरे पक्षी आखो यलटा पिके फळे फुले जंतू फिंतू बट्टासाठीच बयान ताकातनी हाई सटल जिता राहावा गुंता. ईजन आकर्षण चुंबकनं त्यासना मिसय चेतना घुसस शरीरमान चेतना पसरेल राज जगभर. चेतनाना बयेस दखस जीव सापड शरीरमान जग मातली चेतनानं यज्ञान शरीरमा पसरस बोध संज्ञा यज्ञान संस्कार आणि यज्ञाना भय. मराना वखय चेतनानं यज्ञान पटी संधी वस म्हणजे दुसरीकडे चिटकस. मराना टाईमले मनना सोया परकार उभा राहतस त्या मातलं सोया व मन चिटकस आकर्षण भय पुनर्भावमान म्हणजेच दुसरीकडे. माणूसनं जितो पण उमटी येस श्वासना भय. हरेक पलमा श्वासनी ये जा सुरू राहस. आत्मा असा अलग उमटी येत नाही शरीरमझार आणि मनमाबी. आत्माना बारामा गजयुक्त्या इंगण्यात काही ग्रंथेस मातून काही वावड्यास मातून. एकनी वठाड म्हणे आत्मा कसा तर म्हणे गोलगिटिंग का आमचौरस तीन कोणी आठ कोणी सौ कोणी म्हणे आत्मानी चौकशी गोड आंबट तुरट कडू तिखी फिकी कशी म्हणे आत्माना रंग कसा लाल हिरवा पिव्या काया निया सफेद का तांबूस कसा बोलती बंद करतस या सवाल आत्माना बारामा जाणी येत नाही. मुनी कपिलन्या तो ज्ञान मातील शोध पट्ट्यासना मायक खरा खुरा अनुभव. नाही ते दुरते दुरते सत्य आत्माना ठाव ठिकाणा मोजाना कसा तपासाना कसा दखाना कसा समजाना कसा म्हणजे आत्मा वठाडानी सोय करम कुमाडण्या परसार गुंता ते नाही. नाही ते मानसना टोएसले ब्रह्मा टाका साठे तर नाही.
3: आप सुन रहे हो रेडिओ मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग आपलं खानदेश आपली माणसं.

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर स्वागत करते हैं आप सबका। हैप्पीनेस इंडेक्स की इस श्रृंखला में बहुत सी बातें सामने आई हैं और अगर पिछली कड़ी को देखें तो याद आता है कि हमने बात की थी कि क्या एंटरटेनमेंट खुशी दे रही है। हम अभी तक ये सोचते थे कि हम टीवी जो देख रहे हैं या फिल्म देखने जाते हैं या किताब पढ़ लेते हैं वो हमें एंटरटेन करती है कुछ टाइम तक, मेरे थॉट्स जो मुझे तंग कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनसे मुझे दूर ले जाती है, मैं किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता हूँ। लेकिन फिर ये बात समझ में आई थी कि क्यों कहा जाता है कि टीवी देखना या फिल्म देखना एक एडिक्शन बन सकती है, क्योंकि जैसे ही हम जो वहाँ सिचुएशंस हो रही थी उसमें इन्वॉल्व होते जाते हैं, उन्हें अपना थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसे चूज करने का हक उनको दे देते हैं। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बात थी लेकिन जब इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, एक्सपीरियंस करते जाएंगे, हमें समझ में आता जाएगा। आज थोड़ा इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं कि हाउ डज इट रियली वर्क। हमारा सौभाग्य हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: इनफैक्ट सिस्टर शिवानी, इट्स लाइक अगेन आई कैन अंडरस्टैंड नाउ व्हाई पीपल से कि आप रोज हमारे साथ ड्राइंग रूम में होते हैं, बात कर रहे होते, क्योंकि इट्स अ जर्नी और हर बार हमारा जो अनुभव है हम बात यहाँ कोशिश करते हैं समझें, फिर उसे जाके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो एक रिकैप लेना चाहेंगे आपके साथ कि व्हाट रियली हैपन्स जब मैं किसी भी टीवी के प्रोग्राम में या फिल्म में या नॉवल में इन्वॉल्व हो रहा होता।
1: Yeah, it's not that we're not trying to say के हम ये नहीं देखें। Fundamental, of course, हम choose करें क्या हम देख रहे हैं, क्योंकि information तो अंदर feed हो रही है। सिर्फ अब ये ध्यान रखें देखते हुए भी कैसे देखें,

0: को मिलता कि ड्रामा की हर सीन को कैसे देखें. तो जब हम मूवी देखते या टीवी देखते, जस्ट वॉच योर सेल्फ. अगर आप हाफ एन आवर का सीरियल देख रहे हैं या 3 घंटे की मूवी देख रहे हैं, सिर्फ आज शाम को अगर आप कुछ देखें तो उसको देखते हुए अपने मन को बीच बीच में देख लेना कि वो कैसे कैसे.
1: एक्चुअली आई वांट टू शेयर व्हाट हैपेंड टुडे. मैं जब आ रही थी तो पहले मैं कुछ अपना सोच रही थी, ड्राइवर ने गाना चला दिया, वो मेरा सबसे फेवरेट गाना था. एकदम से मुझे स्ट्राइक किया मैं गाना सुनने लग जाती हूँ तो मेरा थॉट खत्म हो जाता है. लेकिन मैंने इस बार चाहा कि नहीं, मैं जो सोच रही थी वो करती रहूं. बट उसकी अट्रैक्शन इतनी थी गाने की, गानों के शब्दों की. और तब मैंने देखा कि गानों के शब्द ना सिर्फ मुझे इन्वॉल्व करते गए बल्कि वो इमोशन भी क्रिएट होने, क्योंकि मैं देख पा रही थी, हम इस पर बात कर चुके थे इसलिए. तो अब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे वो इमोशन तक नहीं जाना, मुझे वापस आना है अपने थॉट पर मेरा मन नहीं था आने का मेरे को, क्योंकि उसमें एंजॉयमेंट मिल रही थी.
0: स्टिम्युलस था ना, वो एक स्टिम्युलस था जो मेरे अंदर वो इमोशंस क्रिएट कर रहा था. क्या होता, हैप्पीनेस या पेन दोनों चीज हॉर्मोन्स तो सिक्रेट करती है ना बॉडी के अंदर. एंड द माइंड नीड्स दैट क्रेविंग बट द बॉडी ऑल्सो नीड्स दोज हॉर्मोन्स. इफ आई एम वेरी वेरी स्टेबल, अगर मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है, दिस ऑल्सो डिवेलप्स धीरे धीरे ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन मेरी बॉडी की कुछ वो होती है, एडिक्शंस होती है, वो हॉर्मोन्स की मुझे आदत पड़ी हुई है. तो मुझे कुछ ऐसा बाहर से चाहिए होता है स्टिम्युलस, कि वो स्टिम्युलस आएगा, वो स्टिम्युलस मेरे अंदर वो इमोशंस क्रिएट करेगा, और जैसे ही वो इमोशंस क्रिएट होंगे मेरे बॉडी के अंदर भी वो हार्मोन सिक्रेट होंगे एंड आई फील गुड, जैसे कि मुझे वो चीज़ मिल गई जो वो चाहिए थी. फिर इवन भले वो दर्द के ही यू नो इमोशंस हो, वो एड्रेनालिन सिक्रेट हो, लेकिन वो सिक्रेट हुआ ना, वो बॉडी को जो चाहिए था वो सिक्रेट हुआ. आई फील गुड एंड देन आई से दिस इज एंटरटेनमेंट, यू नो ये मुझे चाहिए, दिस मेक्स मी फील गुड इवन इफ आई हैव क्राइड फॉर हाफ एन आवर. हाउ कैन आफ्टर क्राइंग यू फील गुड अदरवाइज? तो कोई लॉजिक ही नहीं. आप आधा घंटा पिक्चर देखा, आप कितनी बार रोए उसके साथ, यहाँ तक कि आपने हैंकी तक निकालना पड़ गया, एंड देन वी से आई फेल्ट गुड आफ्टर वॉचिंग द मूवी. वॉट फेल्ट गुड? समवेयर दोज इमोशंस गॉट क्रिएटेड, द बॉडी सिक्रेटेड व्हाट इट हैड टू डू, एंड आई वॉज लाइक ओके दिस इज वॉट इज माई नीड. जैसे ड्रग्स है, डैमेजिंग है, लेकिन बॉडी को आदत पड़ गई है ना, तो जब तक बॉडी लेती नहीं है उस चीज को, लेना उसको अनकंफर्टेबल लगता है. तो इसी तरह अगर मुझे एक पर्टिकुलर प्रोग्राम से वो स्टिम्युलस मिलता है, देन धीरे धीरे धीरे आई स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, कि ये तो मुझे देखना ही है. अगर आज मैं पहुंच नहीं पाई टाइम पर, या वो लाइट नहीं है घर में, एंड वो प्रोग्राम नहीं आ रहा, या आई विल फील वेरी वेरी अनकंफर्टेबल. सो दिस इज लाइक जिसको किसी को वो नहीं मिला जो उसको उसकी आदत होती है. जैसे आपने वो सॉन्ग के साथ किया, नेक्स्ट टाइम हम सभी एक्सपेरिमेंट इसको करके देख सकते हैं कि जब हम कुछ देख रहे हैं, पहले जब हम बैठते हैं जस्ट देखने के लिए, आर माइंड इज क्वाइट स्टिल, यू नो. इनफैक्ट पहले तो आर माइंड इज विद अदर थॉट्स. So this is about watching our mind. It's very interesting. कि जैसे ही हम आकर बैठे टीवी के सामने, पहले थोड़ी देर मेरे मन में कुछ और चल रहा है जो मैं छोड़ कर आया हूँ अभी ऑफिस का काम या घर का. धीरे धीरे वो थॉट्स खत्म हो जाती हैं एंड यू विल एक्सपीरियंस अ लिटिल स्टेज वेयर यू आर इन यू नो नॉट टू मेनी थॉट्स. दिस माइंड इज बिकमिंग साइलेंट, क्योंकि ये वो वाली जो बातें लेकर आया था घर, वो बातें तो खत्म हो गई. तो ये माइंड थोड़ा थोड़ा स्टिल हो जाता है. ये जो स्टिलनेस की स्टेज है, ये है कि यू आर हियर, प्रोग्राम इज देयर, एंड आप उसको डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह आप उस प्रोग्राम को देख रहे हैं. उसका इफेक्ट मुझ पर नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये बहुत थोड़ी देर रहता है. धीरे धीरे हमारी जो नेक्स्ट स्टेज आती, वो आती है कि हम जजमेंटल होना शुरू करते हैं. ऐसे क्यों बोल रहे हैं ये, ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे व्हाटएवर आवर ओपिनियन.
1: देखा उसने ऐसे किया तो अब ऐसे ही होना चाहिए. अब व्हाट नेक्स्ट?
0: इवन इन द क्रिकेट मैच ऐसे क्यों,
1: ये बॉल के
0: यू सी. सो द सेकंड स्टेज बिकम्स जजमेंटल, कि हम अपना ओपिनियन चाहते हैं कि दैट इज हाउ इट शुड, ऐसे करते तो. इवन द एक्टर्स क्लोथ्स, द सीन, व्हाटएवर, एवरीथिंग. तो आई स्टार्ट बिकमिंग जजमेंटल. जैसे ही हम जजमेंटल शुरू हुआ, मतलब क्यों, क्या, कैसे के क्वेश्चन मार्क की सीरीज में गए, ये जो स्टिलनेस थी वो क्या होगी,
1: वो खत्म हो गया.
0: बिकॉज वो माइंड ऐसे ऐसे, ऐसा क्यों, ऐसे कैसे, ऐसे. तो द माइंड स्टार्ट्स गेटिंग डिस्टर्ब्ड, वो स्टिलनेस हमारी खत्म हो गई. सो दिस वाज द सेकंड स्टेज. द थर्ड स्टेज जो आती, कि हम उस कैरेक्टर की स्टोरी के अंदर ही
1: इन्वॉल्व हो जाते,
0: पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं. एंड दैट स्टेज विल बी कि वो कैरेक्टर जो इमोशन वहाँ एक्सपीरियंस कर रहा है,

0: वो इमोशन आई स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग हियर, तो फिर आई एम टोटली इन द स्टोरी, लाइक पूरी तरह से. देन आई हैव नो अदर थॉट एंड देन आई माय क्रिएटिविटी इज ओवर बिकॉज नाउ आई एम ओनली क्रिएटिंग व्हाट दे आर क्रिएटिंग. मेरी अपनी अब कोई नहीं रह गई.
1: मेरे पहले तो मैं कर रही थी वैसे,
0: उससे पहले
1: जजमेंटल जब मैं हो रही थी,
0: पर जैसे जजमेंटल हुए तब क्या हुआ, क्रिएटिविटी नहीं थी. जैसे ही आप जजमेंटल होते हैं आपकी एनर्जी तो उल्टा खत्म होने लगती है, क्योंकि आप किसी और को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. आई कैन सिट अक्रॉस द टेलीविजन एंड कीप ऑन सेइंग व्हाट आई वांट टू से. मैं कितना भी जजमेंटल हो सकती हूँ, कैन आई डू एनीथिंग अबाउट इट? मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ सामने से बैठकर और मैं कहूँ ये नहीं पहनना चाहिए था, ये पहनना चाहिए था, ये सेट ऐसा नहीं, कैन आई डू एनीथिंग अबाउट इट? नो, आई एम थिंकिंग ऑफ दोज थिंग्स विच आर नॉट इन
1: बट माई कंट्रोल.
0: माई कंट्रोल,
1: बट आई हैव अ राइट टू हैव माई ओन ओपिनियन.
0: दैट्स ओके, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, यू आर हैव अ राइट. लेकिन आप बस बैठे हैं और यहाँ आपका माइंड कंटिन्यूसली वो थॉट्स क्रिएट कर रहा है उन चीजों के बारे में जो आपके कंट्रोल में नहीं है. यूजफुल एनर्जी?
1: No, it can't be. Yes.
0: Useful energy.
1: Actually, I know it's always, it's of no use.
0: It's a drain. ये आपका drain शुरू हो गया, कि जो वो stillness थी, वो आपका drainage शुरू हो गया, क्योंकि आप एक एक वो thought create कर रहे हैं जो आपके control में.
1: Actually, और इससे मुझे आदत भी पड़ती जाएगी फिर.
0: Exactly. यही चीज तो फिर practical life में आएगी ना, day to day.
1: कि मैं हर एक को, oh yes.
0: जो आपने कहा, do I not have the right to have an opinion? Yes.
1: So then I'll have my right with
0: everyone. सारा दिन पे. ये बिल्कुल same चीज फिर रोज के ड्रामा में होती है ना. दैट्स व्हाट वी सेड, जो टेलीविजन के ड्रामा के साथ पहले प्रैक्टिस होती है वही चीज फिर हैबिट बन गई, तो वही चीज फिर मेरे डे टू डे लाइफ में आती है. सो वी वेंट थ्रू दीज थ्री स्टेजेस, पहले स्टिलनेस, फिर जजमेंटल एंड तीसरा तो पूरी तरह से इन्वॉल्व. एंड जब पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गई तब तो अपनी थॉट क्रिएट करने की मेरी अपनी कैपेसिटी है वो भी भूल गया. मेरी थॉट की पावर मैंने टोटली उस प्रोग्राम को दे दी. नाउ दिस because I'm doing every day. It's not कि I'm watching a movie just once in a while या मैं टीवी देख रही हूँ once in a while, नहीं, हम रोज कर रहे हैं. तो कोई भी चीज जो रोज करेंगे
1: well, of course,
0: वो बन गई मेरी habit. अब जो हमने पिछली बार भी देखा कि अगर गुस्सा ऑफिस में सिर्फ कर रहे हैं ये सोच के कि गुस्से से काम होता, लेकिन वो मेरी अगर बन जाती है habit, तो वो habit मेरे साथ
1: हर जगह मेरी personality बनती. Yes, now I understand it actually.
0: अब ये था, शुरू किया था जब बैठ कर देखना, मैं एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर, एक साक्षी दृष्टा थी, लेकिन आधे पौने घंटे के अंदर अंदर मैं उस ड्रामा के अंदर पूरी तरह से घुस गई. अब यही चीज फिर सारा दिन होती, क्योंकि अब मुझे हैबिट पड़ गई है. अब धीरे धीरे तो वो साक्षी दृष्टा होना कैसे वो ही हमें आज नहीं पता चलता, और इसलिए आज हमारी वोकैबुलरी ये हो गई है कि अटैचमेंट तो नेचुरल है, डिटैचमेंट, डिटैचमेंट का कॉन्सेप्ट कंफर्टेबल नहीं लगता लोगों को, बहुत कोल्ड लगता है कि हम बहुत स्टिल हैं, हम बहुत डिटैच्ड हैं, हमारे ऊपर असर क्यों नहीं पड़ रहा. लेकिन ये जो असर पड़ने का, प्रभाव पड़ने की आदत जो पड़ी थी वो इससे पड़ती
1: है. वो कंटिन्यू. इनफैक्ट अगर हम देखें वो जब अभी हुआ था, जब मुंबई का जो अटैक हुआ था, तो उसमें मुझे कितने दिन तक, दो दिन लगातार चला था, हम पूरा टाइम डिस्टर्ब्ड रहे थे.
0: लेकिन इसको ही अगर आप देखो जो न्यूज में अगर कोई यस एक इंसिडेंट हुआ है एब्सोल्युटली के वो नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है बात, लेकिन जब हम उसको 24 घंटा हर रोज स्ट्रेच करते हैं, और उसमें हम करते क्या है, किसी के साथ कुछ हुआ हम उसी को लेकर वो रोते हुए को बार बार दिखाएंगे, बार बार उसको पूछेंगे आपको कैसा फील हो रहा है. Somewhere we are using emotions and the other person's feeling to sell it into the market. और क्यों? क्योंकि हम feel करते हैं कि ये लोग देखना चाहते हैं. This sounds very harsh. This sounds very harsh, but it is the truth. हमें लगता है कि ये रहम है. Actually नहीं, उनको रहम नहीं चाहिए, उनको compassion चाहिए, उनको love चाहिए. लेकिन love नहीं है. अगर हमने भी pain create किया कुछ भी ऐसा देखकर, जब ये पूरा टेरर अटैक हुआ, तो व्हाट वाज द इंफॉर्मेशन दैट वाज बीइंग फ्लडेड एवरीवेयर, कि आप सबको गुस्सा होना चाहिए इस बात को लेकर, व्हाई आर यू नॉट एंग्री, पीपल शुड गेट एंग्री, वही तो सोल्यूशन है. हाउ कैन एंगर बी द सोल्यूशन टू एंगर? जिन्होंने जो किया दैट वाज अ साइन ऑफ एंगर, रिजेंटमेंट. ऑलरेडी उस शहर के अंदर जो वातावरण फैल चुका था वो दर्द का था. बहुत लोगों की जीवन ऊपर नीचे हो गई थी, बहुत लोग डर में थे, अपने अपने घरों में ट्रैप्ड थे. इन एन एनवायरमेंट जहां ऑलरेडी इतना पेन है, इतना दर्द है, वी ट्राइंग टू से गेट एंग्री.
1: नहीं, एंड इनफैक्ट वही बात कर रही हूँ कि वो सिचुएशन, अगर हम जो हम जिस मुद्दे पे थे, उस सिचुएशन ने जो कहीं और हो रही थी, उसने पूरी तरह से पूरे जो वॉच कर रहे थे, टीवी देख रहे थे, उन सबके माइंड्स को कैप्चर ही तो कर लिया.
0: या बट नॉट इवन सी, अगर हम देख भी रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद मेरे माइंड में इमिजिएटली ये आना चाहिए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. आई टेल यू अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग दैट हैपन्स एट द ब्रह्मा कुमारीज. वी नॉट सेइंग कि ये होना चाहिए, जो समथिंग वेरी वेरी नाइस दैट हैपन्स हियर इज कि जब भी दुनिया के किसी भी हिस्से में कुछ भी हो जाता है, थोड़ा भी ऊपर नीचे, चाहे वो नेचुरल कलामिटी है या वो कुछ ऐसी बात है, इमिजिएटली एवरीवन नोज दिस, हर सेंटर पर जितने भी हम सारे भाई बहने हैं, वी हैव कलेक्टिव मेडिटेशन. हम सब इकट्ठे मिलकर, अलग अलग अपनी अपनी रीति से घर पर तो करते हैं, लेकिन कलेक्टिव टाइम फिक्स करके हम सब सेंटर पर बैठते हैं और सेंटर पर इकट्ठे मिलकर वी क्रिएट वाइब्रेशंस ऑफ पीस, लव एंड पावर. क्योंकि भगवान परमात्मा हमेशा ये कहते कि दर्द तो ऑलरेडी है. आप दर्द के बारे में चर्चा करते हो, दर्द की खबरें सुन रहे हो और दर्द क्रिएट कर रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस टाइम? Don't just see it as a stimulus. See what is my responsibility now. तो वहाँ दर्द है, हमें क्या भेजना? हमें प्यार भेजना, हमें शांति भेजनी. लेकिन वो कब भेज पाएंगे? जब हम डिटैच्ड हैं. लेकिन अगर मैं ही दर्द में चली गई, हाय क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वेयर इज द पावर?
1: और इनफैक्ट अनोइंगली मैं दिए जा रही हूँ, भेजी जा रही हूँ.
0: हमें लगता है कि ओ मैं तो दिल्ली में बैठी हूँ, ट्रेजेडी तो बॉम्बे में हुई, बट इट्स नॉट ट्रू. इट्स अ कलेक्टिव वाइब्रेशन.
1: डेफिनेटली सुसर शिवानी, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन जब अगेंस्ट चीजें हो रही हैं सोसाइटी के नॉर्म्स के, ह्यूमन काइंड के, तो हम ही तो हैं, इंसान ही तो हैं जिन्होंने अपनी वॉइस भी रेज करनी है. तो अगर हम स्टेबल होके देख रहे हैं या मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज को, इजंट इट बीइंग नॉन रिएक्ट, आई मीन नॉट डूइंग थिंग्स,
0: यू बिकम वेरी पैसिव.
1: यस, यू नो, लाइक मतलब आप बहुत स्लो हो जाते हैं. आपको अपनी बात कहने का भी तो वो जरिया चाहिए.
0: एब्सोल्युटली. लेकिन अपनी बात कहने का जो तरीका है, एक तो वो मैटर करता, और दूसरी अपनी बात कहने के लिए पहले आपकी सोच में तो बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए ना. जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, सी एंगर, पेन, हर्ट, उस टाइम जो हम जिस अटैक के बारे में बात कर रहे हैं, जो तीन फंडामेंटल इमोशंस बहुत हैवी थे, एंगर, पेन, हर्ट, रिजेंटमेंट, एंड स्पेशली वो पूरी, यू नो, एक पूरा एक फ्लेवर जो क्रिएट हो गया हर जगह, इट वॉज दीज थ्री. जब हम इन तीनों इमोशंस के वशीभूत हैं, ये तो डू वी हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्या हम उस समय राइट सोच पाएंगे, राइट बोल पाएंगे? अब इसी स्पेसिफिक बात को भी अगर हम देख लें, जितनी दिन वो न्यूज़ में था, हम देख रहे थे क्या हो रहा है, सो वी वर ऑल्सो, यू नो, एवरी वन इज़ वेरी एंग्री, एवरी वन इज़ टॉकिंग अबाउट इट. किया हमने क्या इज़ अ क्वेश्चन मार्क. हमने क्या किया अपने देश के लिए? कलेक्टिव एंगर था. कलेक्टिव एंगर का रिजल्ट,
1: again, you know, this is what people have seen.
0: See, if
1: again,
0: you want to voice your opinion, all the more you require stability. We thought ke anger and reaction hamari awaaz jyada, you know, jaise normal bhi, wo to badi baat hai, choti baat pe, office mein bhi hum dekhenge ya ghar pe bhi, ki main zor se chilla kar bolunga na to aapko zyada theek se samajh mein aayegi. See, the thing is, first is impact on you, ki aap jo emotions create karte hain, uska aapke upar impact, fir collective, sab logon ke upar uska impact, fir uska end result. Is particular case mein kya hua, humne bahut zyada kuch kiya nahi, humne sirf uske bare mein, jitne din wo news mein tha, hum bhi news ke saath the, and hum bhi usko, you know, office mein bhi wohi baat ho rahi hai, ghar mein bhi wohi baat ho rahi hai, humne kiya kya? 10 din, 15 din, I think that's about it all. Uske baad news change ho gayi, कोई और चीज हो गई दुनिया के किसी और कोने में,
1: पब्लिक मेमोरी बहुत छोटी होती
0: है, हम उसके बारे में बात करने लगे. जिनके जीवन पर उसका इफेक्ट हुआ, जो आज दर्द में है, वो तो आज भी दर्द में है. हमने उनके लिए क्या किया? कुछ नहीं किया. हमने कंट्री के लिए क्या किया इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. हमने सिर्फ गुस्सा किया. व्हाट डज दैट रिजल्ट?
1: अच्छा, लेकिन
0: अगर सारे इकट्ठे होकर, इफ वी हैव टू रियली डू समथिंग उसके लिए, क्योंकि टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इवन कुछ करने के लिए पावर चाहिए. अगर हम अंदर से हर्ट हैं, गुस्से में हैं, हम वीक हैं. वीक अंदर से वीक होकर सिर्फ शोर मचाकर हम कोई परिवर्तन ले आएंगे विल नॉट रियली वर्क. एंड वी नीड टू रिमेम्बर वो करना, वो उस तरह से करना धीरे धीरे मेरी क्या बनते जा रहा
1: है,
0: हैबिट बनता जा रहा है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो क्या होता है कि हम उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, वी नीड टू रिमेम्बर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, डिटैच होकर देखें एंड तुरंत अपने आप से पूछें अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. So that like I was sharing at the Brahma Kumaris, हम लोग कलेक्टिव मेडिटेशन करते कि हम सब बैठ कर, और ये तब नहीं सिर्फ कि अगर कुछ ऐसे इंसिडेंट होता, बट एवरी मंथ ऑल्सो. एक है कि एवरी डे हम शाम को जब मेडिटेशन करते 6:30 to 7:30, हम दो बार मेडिटेशन करते हैं हर रोज दिन में. वन इज इन द मॉर्निंग एंड ये हमने बहुत यू नो क्लियरली जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर जैसे ये किया है कि मॉर्निंग में जो मेडिटेशन है वो है अपने ऊपर काम करने का समय, अपनी मेहनत, अपने संस्कारों को परिवर्तन. और शाम को जब मेडिटेशन करते इट इज फॉर सर्विंग द वर्ल्ड. कि सुबह आपने मेडिटेशन किया, आपने अपने अंदर पावर्स भरी, शाम को आप मेडिटेशन करो एंड वो पावर्स जस्ट सेंड इट आउट टू द वर्ल्ड, जस्ट सेंड इट आउट. Now, when I came first to the Brahma Kumaris, I just didn't know how this works. ये कैसे होगा कि हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ create कर रहे हैं कुछ, and this is going out to the world. ये and for me it was a question mark कि इसका क्या फायदा हो सकता है कि हम यहाँ बैठे हैं, वो किसी और देश में है, वो तो अभी भी दर्द में ही है. एंड ये ऐसी चीज है जिसका कोई तुरंत प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं पता चलता कि यू नो जैसे we used to call this donation of peace and power. तो आई सेड धन डोनेट करो तो दिखाई देता, कपड़े डोनेट करो दिखाई देता है, मतलब हमें ये नहीं कि फॉर एटलीस्ट आई कैन सी दैट आई एम गिविंग इट टू यू एंड यू आर टेकिंग इट. हां एंड आई सी कि आपको वो मिला जो आपको चाहिए था, लेकिन पीस डोनेट करो वो आप तक पहुंच रहा है कि नहीं, आई वुड नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. के बट नाउ व्हाइल आफ्टर डूइंग इट फॉर सो मेनी इयर्स आई हैव रियलाइज्ड इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. हाँ हमें उसका तुरंत वो नहीं पता चलेगा कि वो किस तक पहुंचा, क्या हुआ, लेकिन जब ये समझ में आ गया कि थॉट्स एनर्जी है और जो एक एक थॉट हम क्रिएट करते वो वाइब्रेशन है जो एनवायरनमेंट में फैलता है. पहले मुझे मिलता, मेरे आसपास जो है उनको मिलता, देन ग्रेजुअली आई अंडरस्टूड कि एक एक थॉट जो हम क्रिएट करते वो वाइब्रेशन है. इट डजंट स्टे इन, इट रेडिएट्स, इट वाइब्रेट्स इनटू द एनवायरनमेंट. एंड वो जिनके प्रति भी क्रिएट किया गया होगा, बिकॉज दैट्स व्हाट वी हैव सीन एवरी टाइम कि जो थॉट मैं आपके लिए क्रिएट करूंगी वो आप तक पहुंचेगा. तो जब हम मेडिटेशन करते हैं इट इज कॉन्शियसली क्रिएटिंग थॉट्स. यू नो वी डोंट रियलाइज, हम लोग आज सब बोल रहे हैं कि दुनिया में शांति होनी चाहिए. एवरी वन इज टॉकिंग कि दुनिया में शांति होनी चाहिए. कैसे आएगी? जब हम एक एक शांत रहेंगे तब ऑटोमेटिकली शांति के वाइब्रेशंस फैलेंगे, ऑटोमेटिकली शांति होगी. हम सब अशांत हैं और हम कहते हैं दुनिया में शांति होनी चाहिए. दुनिया मीन्स व्हाट? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड. हरेक जो हम हैं, हम सबकी मन की स्थिति क्या है, कलेक्टिव सबकी मन की स्थिति को अगर हम लें वो दुनिया की स्थिति है. तो हम कहते हैं दुनिया में शांति हो तो मैं शांत हो जाऊंगा. यू नो दुनिया सब ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा. मैं शांत होंगे तो दुनिया में शांति आएगी. तो नाउ वी आई कांट वेट कि पूरी दुनिया में सभी 600 करोड़ लोग जब शांत हो जाए तो दुनिया शांत होगी. लेकिन एक एक करेगा, एक एक क्रिएट करेगा वो पीसफुल वाइब्रेशन तो दुनिया में तो आएगी. लेकिन सबसे पहले आई विल बी पीसफुल, माय फैमिली विल बी पीसफुल, वेयर आई एम वर्किंग विल बी पीसफुल. तो ये जो हम मेडिटेशन करते हैं we do it every evening 6:30 to 7:30, serving the world, sending out powers of peace, love and power. And specifically, every third Sunday of the month, ये तो fixed है, all over the world, every third Sunday of the month, 6:30 to 7:30, सभी भाई बहने सेंटर पर आते, and it is called Meditation for World Peace. कि विश्व में शांति के लिए हम इकट्ठे मिलकर मेडिटेशन करते.
1: In fact, you know, it's such a beautiful aspect कि it will make me feel so good कि I'm doing it for the world. You know, अभी तक तो सब कुछ इवन प्रोग्राम में भी हम अपने लिए कर रहे थे. यू नो हर चीज हम पर फोकस हो रही थी और कहीं ना कहीं वो जो ह्यूमन एलिमेंट ये होता है कि हम दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं. और हर बार हमारे को लगता है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम इतने बिजी हैं अपनी लाइफ में, कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कुछ किसी का दर्द नहीं बांट सकते, कुछ नहीं कर सकते. So this gives me such a good feeling. Actually, we should all try to experience
0: and
1: it.
0: And in this case, it is कि जब आप कर रहे हैं किसी और के लिए, सबसे पहले किसको मिलता?
1: हाँ, खुद को मिलना
0: सबसे पहले. See, if I do something for you, it's for you. तो उसमें शायद हो सकता है मुझे कोई benefit नहीं, लेकिन इसमें सबसे पहले मुझे मिलता और फिर मेरे through औरों तक पहुंचता. And जब हम देते हैं, that's the most beautiful feeling. लेना लेना सारा दिन, ये तो बहुत easy है. लेकिन जो खुशी मिलती है जब हम देते हैं, this is something to be experienced, absolutely.
1: In fact, it always happens, you know, हम कुछ भी जब देते हैं, हमें अच्छा लग रहा होता है.
0: You know, gift, जैसे gift होता है, I have to ask myself, gift देने में ज़्यादा अच्छा लगता या gift लेने में? It's always the giving, a giving of a gift. आप choose करने जाएंगे, आप लेंगे, you're always so happy because giving is human nature. लेकिन वो हम अपनी basic nature को आज थोड़ा सा भूल गए हैं. And instead of giving happiness, giving love, giving peace, we are wanting asking happiness, for asking for love, asking for peace. So let's experiment this meditation together.
1: In fact, Sister Shivani, हम जो बात कर रहे थे वो ये थी कि जो impact था आज इस पूरी बातचीत में, ये तो समझ में आया कि क्या process है, क्या कुछ कैसे होता है, जो जिसे हम you know, हमारा जो पूरा जितनी देर हम टेलीविजन के आगे होते हैं, क्योंकि ये जो हमने एग्जाम्पल्स लिए उसमें भी तो यही हुआ, जितने दिन तक वो टीवी पर दिखते रहे, जितने दिन तक वो चर्चा में रहा, उतने दिन तक वो हम पे हावी रहा, उसके इमीडिएटली बाद हमें याद भी नहीं रहा,
0: कुछ और आ गया ना तब.
1: हाँ, so it means it took over ना.
0: So that means मेरी अपनी क्रिएटिविटी क्या थी. If you really felt for what had happened, तो टीवी से वो हट भी गई न्यूज, आपकी फिर भी वो रहना ही चाहिए थी ना, वट एवर यू थॉट, बट वो तो फिनिश्ड. सो इट्स नॉट रियली दैट यू फेल्ट इट, इट इज समवन एल्स वाज क्रिएटिंग योर इमोशंस फॉर यू दैट टाइम, एंड वो समवन एल्स चेंज्ड द टॉपिक, हमारा भी चेंज.
1: तो हमारी रैशनैलिटी खत्म हो चुकी होती है एक्चुअली.
0: वही, दैट्स व्हाट वी सेड, हमारी क्रिएटिविटी कि कौन सी थॉट्स क्रिएट करनी है, चूज करनी है, इट्स ओवर.
1: तो वी अंडरस्टूड कि शुरुआत में क्या होता है, देयर इज अ स्टेज where we are stable, we are detached, हमने जो पूरा process देखा, और उसके बाद हमारा जो you know लोगों के ऊपर जो judgmental होना कि ये ऐसा किसी भी चीज़ के लिए, and then पूरी emotions हमारे जो take over करती है. ये तीन process हैं जब हम किसी भी चीज़ में involve हो रहे होते हैं, बाहर ही किसी भी, और ये फिर मेरी habit बनता जाता है, judgmental होना और finally फिर उस situation को अपने ऊपर हावी होने देना. इनसे अब काम कैसे करना, हम टेलीविजन के प्रोग्राम से ही जुड़े हुए चीजें करेंगे, सो दैट क्योंकि आप इस प्रोग्राम से भी जुड़े हुए हैं, तो उसको भी अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको कम ना होने दें. यू नो, आपको जो समझ में आ रहा है, जो एक्सेप्ट, मतलब आप ब्लाइंड, बार बार हम ये कहते हैं कि ब्लाइंड फेथ ना रखकर, इसीलिए अनुभव की बात कही जाती है,
0: एक्सपेरिमेंट.
1: हाँ, कि आपका एक्सपेरिमेंट और फिर आपका एक्सपीरियंस जो होगा उसके साथ वो कैसा होगा वही आपको तय करवाएगा. आपके मन में कोई बात आ रही है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमें फोन भी कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, इसमें आज हमने मेडिटेशन के उस एस्पेक्ट को भी समझा जो कलेक्टिव होती है और जो सिर्फ मुझसे जुड़ी नहीं हो सकती, लोगों से भी जुड़ सकती है, विश्व से जुड़ सकती है. तो आज सिस्टर शिवानी चलते चलते चाहेंगे कि थोड़ा सा अनुभव वो करें.
0: आज दिन तक हमने मेडिटेशन किया, आज उसमें एक नया एस्पेक्ट देखते कि हाउ आई कैन क्रिएट वाइब्रेशंस ऑफ पीस एंड सेंड इट आउट टू द वर्ल्ड. तो इसमें कोई हमें स्पेसिफिकली लोगों के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन आई क्रिएट वो शांति की संकल्प, वो अनुभूति, एंड देन आई सेंड इट आउट टू द वर्ल्ड. डोंट सिट एंड थिंक कि वो किस तक पहुँचेगा, कहाँ पहुँचेगा, नहीं, जस्ट सेंड इट आउट विद अ प्योर फीलिंग एंड अ प्योर इंटेंशन एंड इट विल रीच आउट टू देम. लेट्स सिट कम्फर्टेबली, बाहर की रोजमर्रा की बातों से अपनी बुद्धि को हटाते हुए अपने ऊपर लेकर आते हैं. आई दैट पावरफुल बींग जो हर संकल्प क्रिएट करता है. आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट. आई एम अ पीसफुल बींग. शांति मेरा अपना स्वभाव, मेरी अपनी नेचर है. ये शांति की वाइब्रेशंस, ये शांति की शक्ति मुझसे निकलकर सारे विश्व तक पहुंच रही है। देखने का प्रयास करें वाइब्रेशंस ऑफ पीस। इट्स लाइक अ लेजर बीम, मुझसे निकल सारे विश्व तक पहुंच रही है, विश्व की एक एक आत्मा तक पहुंच रही है। ओम शांति,
1: ओम शांति। थैंक यू सो मच। अब आपसे भी विदा लेंगे, लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि आने वाली कड़ियों में बहुत सी और बातें हम समझ पाएंगे। ओम शांति।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, जिसका सही जवाब देने वाले भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छायाचित्र। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है wataNkaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। आप हमें SMS के जरिए भी जवाब भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7771908908। नंबर एक बार फिर सुन लें, 7771908908। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

छोटा सा मंत्र मैं आपको देता हूँ, इसे आप अपने हृदय में अंकित कर लें और अपनी हर सांस में उसे अभिव्यक्त करें। ये मंत्र है, करो या मरो। अपने इस प्रयास में हम या तो स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे या फिर जान दे देंगे। इस वक्तव्य के साथ 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आर पार की उस लड़ाई का उद्घोष किया जिसे आज हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये गांधी जी की एक शस्त्रविहीन युद्ध की अद्भुत खुली घोषणा थी। इसके साथ ही 9 अगस्त 1942 को पूरे देश में आरंभ हो गई ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध वो निर्णायक लड़ाई जिसने अंग्रेजों

हारने लगे थे और ब्रिटेन पर दबाव बन रहा था कि वो भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करे। इसी उद्देश्य से स्टेफर्ड क्रिप्स 23 मार्च 1942 को भारत की किस्मत का पुलिंदा अपनी अटैची में लिए दिल्ली पहुंचे, लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग पर भारत के समक्ष जो प्रस्ताव उन्होंने रखे वो बेहद निराशाजनक थे। इस प्रस्ताव के सबसे आपत्तिजनक बिंदु ये थे कि ब्रिटिश सत्ता भारत की सुरक्षा अपने हाथों में रखना चाहती थी और गवर्नर जनरल के वीटो के अधिकार को भी वो बनाए रखने के पक्ष में थी। इसके साथ ही भारतीय एकता की जमीन में फूट डालते हुए ये प्रावधान दे रही थी कि भारत के जो प्रांत संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है उन्हें भारतीय संघ के समान ही पूर्ण स्वराज का दर्जा प्रदान किया जाएगा। अंग्रेजों की इस कुटिलता से भारत की आशाओं को गहरा धक्का पहुंचा और भारतीय प्रतिनिधियों ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। गांधी जी ने कहा कि ये प्रस्ताव एक दिवालिया होने वाले बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। इसी पृष्ठभूमि पर आंदोलन की रणनीति तैयार हुई और 14 जुलाई 1942 को वर्धा अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इस आंदोलन के लिए 9 अगस्त की तारीख चुनी गई, जिसे देश भर में प्रतिवर्ष काकोरी कांड स्मृति दिवस के रूप में मनाने की परंपरा सरदार भगत सिंह ने शुरू की थी। 1925 की 9 अगस्त ही वो तारीख थी जब ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलटने के लिए पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के 10 वीर क्रांतिकारियों ने काकोरी कांड को अंजाम दिया था। इसी ऐतिहासिक तारीख 9 अगस्त को एक बार फिर महासमर का शंखनाद होना था। 8 अगस्त 1942 को रात 10 बजे गांधी जी ने बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में अंग्रेजों को बलपूर्वक चेतावनी दी कि या तो इच्छापूर्वक भारत का शासन भारतवासियों के हाथों में सौंपकर यहां से चले जाओ, अन्यथा तुम्हें संपूर्ण भारत की उभरती हुई शक्ति का सामना करना पड़ेगा। इस तरह ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध भारतीयों की एक खुली लड़ाई की रणभेरी बज उठी।

8 अगस्त की बंबई की हलचलों को लेकर सरकार अत्यधिक चौकन्नी थी। ब्रिटिश सत्ता ने रात 12 बजे ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर अलग अलग जेलों में डाल दिया। गिरफ्तारी से कुछ पहले ही सारे शहर के टेलीफोन तार काट दिए गए ताकि हंगामा न हो। गांधी जी के साथ भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को यरवदा पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में और अन्य नेताओं को अहमदनगर के किले में नजरबंद कर दिया गया। 8 अगस्त को ही ये घोषणा हो चुकी थी कि 9 अगस्त को सुबह ग्वालिया टैंक के मैदान में राष्ट्रीय झंडे को सलामी दी जाएगी। सुबह उठते ही जब जनता ने नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार सुना तो सभी लोग ग्वालिया टैंक मैदान की ओर चल पड़े। वहां पहुंचे तो मालूम हुआ कि सारे मैदान पर पुलिस ने कब्जा कर लिया है। पुलिस की परवाह न करते हुए जनता निर्भय और निसंकोच सभा स्थल में एकत्रित हो गई। सभी मुख्य नेताओं के जेल चले जाने के बाद नेतृत्व के अभाव में लोगों के बीच से ही नेतृत्व उभरा। एक मोटर आई जिसमें भूला भाई देसाई के सुपुत्र सवार थे। उन्होंने आते ही राष्ट्रीय झंडा अपने हाथ में ले लिया। इस पर एक यूरोपियन सार्जेंट ने आगे बढ़कर ऊंचे स्वर में कहा, इस मैदान पर अब पुलिस और मिलिट्री का कब्जा है, तुम सब यहाँ से हट जाओ वरना आंसू गैस का प्रयोग किया जाएगा। समारोह की संचालिका थी अरुणा आसफ अली। उन्होंने छोटे लड़के लड़कियों को वहां से दूर हटा दिया और स्वयं भाषण देना प्रारंभ किया। इस पर पुलिस के सिपाही आंसू गैस के थैले लेकर सभा स्थल पर पहुंच गए। तमाम विरोध और अफरा तफरी के बीच अरुणा आसफ अली ने ग्वालिया टैंक मैदान में झंडा फहराकर आंदोलन की शुरुआत कर दी, जिसने देशवासियों के मन को उत्साह से भर दिया। जनता को नेताओं की ओर से पहले ही समझाइश दी गई थी कि आंसू गैस छोड़ने पर जमीन पर लेट जाना चाहिए। लोगों ने वैसा ही किया। 2 मिनट तक सभी नीचे लेटे रहे, परंतु जैसे ही उठकर खड़े हुए आंसू गैस फिर छोड़ दी गई। लोग फिर से लेट गए। तब पुलिस ने सबको लाठियों से मारना शुरू कर दिया। बहुत से लोग घायल हुए। दिन के 10 बजते-बजते सारा बंबई शहर खुले विद्रोह का अखाड़ा बन चुका था। जनता इस अत्याचार से विक्षुब्ध हो गई। लोगों ने सरकारी संपत्तियों पर हमला किया, रेलवे पटरियों को उखाड़ दिया, डाक और तार व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया और सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराने लगे। देश की जनता ब्रिटिश सत्ता के आक्रमण का उत्तर देने के लिए मैदान में उतर आई थी, क्योंकि करो या मरो का संदेश देश के कोने कोने में गूंज उठा था। जन मन में प्रतिरोध इतना तेज था कि देश के कई भाग, जैसे संयुक्त प्रांत में बलिया, बंगाल में तामलुक, महाराष्ट्र में सतारा, कर्नाटक में धारवाड़ और उड़ीसा में तालचेर और बालासोर में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई। पहली अस्थायी सरकार बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी। सतारा में विद्रोह का नेतृत्व वाईवी चौहान और नाना पाटिल ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की चिंगारी जो बंबई से उठी तो पूरे देश में फैल गई। सारा देश एक धधकता हुआ ज्वालामुखी बन गया।

अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये ललकार जैसे धरती से उठकर आसमान तक पहुंच रही थी। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने तैयार किया था, जिन्होंने बंबई के मेयर के रूप में भी काम किया। ये वही यूसुफ मेहर अली हैं जिन्होंने साइमन गो बैक के नारे को भी गढ़ा था। इस अगस्त क्रांति में अनगिनत नेता जेल की सलाखों के पीछे थे और जो बाहर थे वो भूमिगत रहते हुए इसे गति दे रहे थे। जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, एस एम जोशी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे कई नेता लगभग पूरे आंदोलन के दौरान भूमिगत रहते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों को हवा देते रहे। सन 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ, उस समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल में नजरबंद थे। जब सरकार की ओर से हिंसक कार्रवाई शुरू हुई तब जयप्रकाश जी से सहा नहीं गया और 11 नवंबर 1942 को दीपावली की अंधेरी रात में 5 अन्य सहयोगियों के साथ वो जेल की दीवार फांदकर भाग निकले। बाहर पहले से ही मोटर की व्यवस्था थी। पहले मोटर से और फिर पैदल रांची गया होते हुए बंबई पहुंचकर वो आंदोलन में जुट गए। 1943 के मई महीने में नेपाल की तराई में राष्ट्रीय सेना तैयार करते हुए वो और उनके कई साथी गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिए गए। परंतु वहां भी वो देर तक नहीं टिके। योजनानुसार रात के समय बहुत से नवयुवकों ने जेल पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया, जेल का फाटक तोड़ डाला और जयप्रकाश जी अपने सहयोगियों के साथ बाहर निकल गए। उस समय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी उनके साथ थे। इस प्रकार 2 वर्ष तक लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने सरकार की सारी शक्ति को अंगूठा दिखाकर इस क्रांति का अभूतपूर्व संचालन किया। इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी भी बहुत महत्वपूर्ण रही। ब्रिटिश सरकार ने भूमिगत अरुणा आसफ अली को पकड़वाने वाले को 5,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा कर रखी थी। उधर उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने सहयोगियों के साथ 14 अगस्त 1942 को एक खुफिया रेडियो प्रारंभ किया था। ये रेडियो लगभग हर दिन अपनी जगह बदलता था ताकि अंग्रेज अधिकारी उसे पकड़ न सकें। 3 महीने तक प्रसारण के बाद अंततः अंग्रेज सरकार ने उषा मेहता और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। लाखों युवाओं ने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। 1942 के अंत तक लगभग 60,000 से अधिक लोग जेल में डाल दिए गए और कई हजार लोग मारे गए। बंगाल के तामलुक में 73 वर्षीय मातंगनी हाजरा, असम के गोहपुर में 17 वर्षीय कनकलता बरुआ, बिहार के पटना में 7 युवा छात्र, ऐसे हजारों लोग प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से मारे गए। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन से संबंधित समाचारों को प्रकाशित करने पर पाबंदी लगा दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन सन 1857 के बाद दूसरा सबसे बड़ा जन आंदोलन साबित हुआ। 1943 के अंत तक इस आंदोलन ने भारत को संगठित कर दिया था और अंततः ब्रिटिश सरकार ने संकेत दे दिया कि सत्ता का हस्तांतरण कर अब उसे भारतीयों के हाथ में सौंपा जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसी खुली लड़ाई थी जिसके बाद भारतीयों ने पहली बार स्वाधीनता की आहट को महसूस किया था। इस आंदोलन ने अंततः भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया।

0: आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए आइए हम गाएं अपना राष्ट्रगान। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: www.rashtragaan.in पर विजिट करें और अपना विवरण दर्ज करें
0: और बजती हुई धुन के साथ खड़े होकर के बड़े गर्व के साथ गाइए अपने राष्ट्रगान को और इसे अपलोड करें।
1: आप इसका ई प्रमाण पत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं। संकलित किए गए वीडियो का प्रसारण 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से होगा।
0: तो फिर देर किस बात की, तुरंत विजिट कीजिए www.rashtragaan.in पर और शामिल हो जाइए आजादी के अमृत महोत्सव में।
1: याद रखिए, वीडियो अपलोड करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त रात 12 बजे तक। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और श्रोताओं, अब वक्त है आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के विजेताओं के नाम जानने का। हमारा सवाल था कि अरुणा आसफ अली ने 9 अगस्त 1942 को मुंबई के किस मैदान में झंडा फहराया था। इसका सही जवाब है ग्वालिया टैंक मैदान, जो अब अगस्त क्रांति मैदान कहलाता है। यूं तो कई श्रोताओं ने हमें सही जवाब लिख भेजा है, लेकिन लकी ड्रॉ द्वारा चुने गए हमारे 4 भाग्यशाली विजेता हैं जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक गुर्जर, दिल्ली से विष्णुदत्त शर्मा, बालाघाट से शीला पटले और सागर से सतीश पांडे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र। और श्रोताओं, अब बारी है आज के सवाल की। आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हमारा आज का सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने खुफिया रेडियो प्रारंभ किया था। सवाल एक बार फिर सुन लें। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने खुफिया रेडियो प्रारंभ किया था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। आप हमें SMS के जरिए भी जवाब भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7771908908। नंबर एक बार फिर सुन लें, 7771908908। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें। ये वतन
2: का राग। नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि आपण ट्यून केला आहे रेडिओ मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट।

0: बचपन से मुझे दो चीजों का आकर्षण रहा है, बंगाल की क्रांति का और हिमालय की शांति का। उस वक्त देश गुलाम था, परतंत्र देश में यते मही स्वराज्य की साधना का आरंभ कहाँ से हो सकता है। परदेशियों को अपने इस मुल्क में से हटाना चाहिए, यह लगन बचपन से थी। साधन शुद्धि का विचार क्षितिज पर नहीं आया था, इसलिए बंगाल की क्रांति साधन हो जाती थी। साथ साथ हिमालय की पुकार भी जोरदार थी। शंकराचार्य ज्ञानेश्वर चैन से बैठने नहीं देते थे, द्वंद चलता रहता था। आखिर ब्रह्म दर्शन की उत्कट अभिलाषा की विजय हुई और ब्रह्म विद्या के नाम पर 1916 में गृह त्याग करके काशी पहुंचा। परंतु वहां भी द्वंद ने साथ नहीं छोड़ा। हिमालय जाऊं या बंगाल, मन में दुविधा थी। पांव दोनों ओर खींचे जाते थे।
1: ईश्वर से ये द्विधा कहां छिपी थी? काशी के हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के निमित्त स्वराज युद्ध का एक महासेनानी गांधी वहां पहुंचा और उसने विदेशी शासनकर्ता पर ऐसे प्रखर प्रहार किए कि सारा हिंदुस्तान हिल उठा। विनोबा ने उस ऐतिहासिक भाषण की रिपोर्ट अखबारों में पढ़ी और उसे लगा कि ये कोई विशेष व्यक्ति है। तुरंत ही लंबी प्रश्नावली सहित गांधी जी को पत्र लिखा। उनका उत्तर मिला।
2: आपके प्रश्नों का जवाब पत्रों द्वारा नहीं दिया जा सकता। यहाँ आइए, चर्चा भी होगी और हमारा जीवन भी देखने को मिलेगा।
0: हिमालय और बंगाल दोनों छूट गए और वे पांव बढ़े साबरमती की ओर, बापू के चरणों में, जहां बंगाल की क्रांति और हिमालय की शांति दोनों का दर्शन हुआ और मेरी दोनों इच्छाएं पूरी हो गईं।
1: १९१६ की सातवीं जून प्रातःकाल की मंगल बेला अहमदाबाद के कोचरज आश्रम में बंगाल की क्रांति और हिमालय की शांति का सपना देखने वाला युवक विनायक गांधी जी के आश्रम में पहुंचा। गांधी जी कहाँ है? पूछते पूछते वो गांधी जी के पास पहुंचे तो देखा कि वे बैठे बैठे सब्जी काट रहे हैं। इस पर विनोबा कहते हैं,
0: बापू के प्रथम दर्शन में ही मुझे श्रम का पाठ मिला। बापू ने सब्जी काटते हुए ही मेरे निजी जीवन के बारे में पूछताछ की, फिर कहा,
2: यदि तुम्हें यहाँ रहन सहन अच्छा लगता हो और अपना जीवन तुम सेवा कार्य में लगाना चाहते हो तो यहाँ रहो, मुझे उससे खुशी होगी। लेकिन तुम बहुत दुर्बल दिखते हो। आत्मज्ञानी साधारणतः शरीर से कमजोर रहते हैं, परंतु तुम तो बीमार दिखते हो। आत्मज्ञानी कभी बीमार नहीं पड़ते।
0: बापू से मुझे ये दूसरा पाठ मिला। बापू की यह बात मैं कभी भूल नहीं सकता। रोग होना योग की कमी है। सच्चा योगी कभी रोगी नहीं हो सकता।
1: विनोबा सत्याग्रह आश्रम में जब पहुंचे उस समय शारीरिक श्रम की उन्हें इतनी आदत नहीं थी और आता भी नहीं था। कभी कुछ खास काम किया ही नहीं था, उसमें रुचि भी नहीं थी। परंतु आश्रम में प्रवेश करते ही प्रत्यक्ष बोध पाठ मिला। सब्जी काटते समय पहले दिन जो बापू से बात हुई सो हुई, उसके बाद सिर्फ काम की बातें होती थी। बापू को मालूम था कि इस लड़के में क्या क्या गुण भरे हैं, लेकिन दूसरे लोगों के लिए तो वो एक सामान्य व्यक्ति था। एक दिन बापू किसी से कह रहे थे,
2: यह तो गौण भाषा है।
0: नहीं, यह भक्ति की भाषा है।
2: बिल्कुल सही है तुम्हारी बात, ज्ञान की भाषा और भक्ति की भाषा।
1: ये साधारण सा जड़ दिखने वाला आदमी सब कुछ समझता है। तब से सब लोग विनोबा की फिक्र करने लगे और लोगों ने उनसे संपर्क बढ़ाना भी शुरू किया। देह की नश्वरता और आत्मा की अमरता की गीता संदेश को आत्मसात करने वाला विनायक आश्रम में आते ही विनोबा बन गया। उसकी संत प्रकृति देखकर मराठी ढंग पर बापू ने ही उसके विनू नाम के पीछे बा लगाकर विनोबा कर दिया। विनायक विनोबा नाम पाकर बापू के आश्रम में रहते थे। साबरमती के किनारे स्वराज्य के सैनिकों की कड़ी साधना चल रही थी। बापू के चरणों में हिमालय पाने वाले विनोबा की भी कर्म ज्ञान और भक्ति की अखंड साधना चलती थी। एक दिन सुबह साबरमती नदी में विनोबा नहा रहे थे कि नहाते नहाते वे आगे बढ़ गए। देखते देखते वे नदी के प्रवाह में खींचने लगे। धरती से पांव हटते ही विनोबा वास्तविकता को पहचान लेते हैं। तैरना आता नहीं, किनारे पर से कोई मनुष्य बचा सकता नहीं। तेज धार में मुट्ठी भर हार्ड चाम को ढूंढना भी असंभव। लोगों ने देखा तो चिल्ला उठे, विनोबा डूब रहे हैं, कोई बचाओ बचाओ।
0: बापू को कहना कि विनोबा जाता है, आत्मा अमर है, देह नश्वर है। आत्मा अमर है, देह नश्वर है। देह तो घसीटा हुआ जा रहा है, परंतु मेरे तो मुख राम नाम दूसरा ना कोई। आत्मा अमर है, देह नश्वर है।
1: ईश्वर इच्छा से पानी में बहते बहते बीच में एक छोटी सी टेकड़ी आ गई और घिसटता हुआ शरीर वहीं अटक गया। कालदूत फिर से एक बार कान में गुनगुनाकर चला गया, परंतु यहां तो न मृत्यु का डर है न जीवन की लोलुपता। यहां यू भी वाहवा है और वो भी वाहवा है। साबरमती के किनारे खड़े हुए डरे हुए आश्रमवासियों ने देखा और सुना कि टेकड़ी पर अटका हुआ शरीर एक ही वेद वचन बोल रहा है, देह नश्वर है, आत्मा अमर है।

0: उन दिनों आश्रम की बात है। आश्रम के प्रांगण में रोज सुबह शाम बापू के सानिध्य में प्रार्थना होती थी। इस प्रसंग को बताते हुए विनोबा कहते हैं,
1: बापू का ऐसा आग्रह था कि सब आश्रमवासी प्रार्थना में हाजिर रहें। प्रातः प्रार्थना में जिन्हें नींद आती थी उन्हें बापू का आदेश था कि वे खड़े खड़े प्रार्थना करें जिससे उनकी नींद खुल जाए। प्रार्थना में रोज मगन भाई गांधी सबकी हाजिरी लेते थे। जो हाजिर होता वे ओम बोलते थे। सबसे पहले बापू का नाम लिया जाता था। एक बार मगन भाई ने हाजिरी लेने के बाद कहा कि 15 लोग हाजिर हैं। इस पर मैंने तुरंत खड़े होकर कहा, प्रार्थना में 15 नहीं 14 लोग हाजिर हैं।
2: मगन भाई, विनोबा गणितज्ञ है, जरा फिर से गिन लो। लो भाई विनोबा, मगन भाई तो कह रहे हैं कि 15 थे और 15 ही है। क्यों विनोबा, क्या रहस्य है?
1: बापूजी, सदेह तो 15 लोग हाजिर हैं, परंतु जिनको हाजिरी लेनी है उनका मन हाजिरी लेने में होने से वे देह से प्रार्थना में हाजिर होते हुए भी मन से तो गैर हाजिर है ना। इसलिए मैंने कहा कि प्रार्थना में 15 नहीं 14 हाजिर हैं। परंतु बापू, ऐसी हाजिरी लेने का क्या अर्थ है?
2: एक तो वे काम करते हैं तो कर्म ही प्रार्थना हो गई, और दूसरा जब अपना नाम लिया जाता है तब हम ओम में जवाब देते हैं। उसका अर्थ इतना ही है कि हम उस वक्त जागरूक होकर भगवान से कहते हैं कि प्रभु, तुम्हारे दरबार में मैं मन सहित हाजिर हूँ।
1: चिंतन मनन प्रधान ईश्वर आराधना में तमोगुण का डर रहता है। तमोगुण में जड़ता, आलस्य, बेजवाबदारी और स्वच्छंदता आती है। इसलिए प्रार्थना में निरंतर जागृति चाहिए। विवेकानंद का एक प्रसंग है। प्रार्थना में एक बार उन्होंने अपने शिष्यों को नहीं देखा। तब से उन्होंने नियम बनाया कि गैर हाजिर शिष्यों को अपनी भिक्षा खुद मांगनी होगी। लोगों के समक्ष जाने में साधक को जागृत रहना पड़ता है। इस तरह से उन्होंने शिष्यों के तमोगुण को दूर किया। प्रार्थना में तमोगुण ना रहे इसकी सावधानी रखनी पड़ती है।
0: सामान्यतः विनोबा स्थूल बाह्य प्रतिज्ञाओं के विरुद्ध है। वे खुद तो कभी ऐसी प्रतिज्ञा करवाते नहीं हैं। फिर भी वे मानते हैं कि प्रतिज्ञा ऊपर से लादी नहीं जानी चाहिए, अंदर से सहज भाव से आनी चाहिए। आश्रम के साधक लोग अलग अलग प्रकार के व्रत लेते थे, कोई अस्वाद व्रत का तो कोई अपरिग्रह व्रत का। बापू का जोर एकादश व्रत पर था, जिनका कि नित्य प्रार्थना में पारायण होता था। एक दफा 4-5-10 लोग चर्चा करने बैठ गए कि व्रत पालन का पूरा प्रयत्न करना चाहिए, व्रत लेने की क्या जरूरत है। विनोबा ने कहा,
1: मुझे लगता है कि व्रत लेने से अगर चित्त का बोझ हल्का होता हो तो समझना चाहिए कि व्रत लेना जरूरी अथवा उचित था। परंतु व्रत के कारण सिर अगर भार से लद जाता हो तो ऐसे व्रत की जरूरत नहीं है। ऐसी प्रतिज्ञा उन्नति का साधन नहीं हो सकती।
2: मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता था, उसमें सफलता भी मिलती थी, असफलता भी मिलती थी। साधक की जैसी दशा होती है वैसी ही मेरी भी थी। परंतु जब से मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया तब से मानो मुझे एक उत्तम रास्ता ही मिल गया। रास्ता उत्तम हो तो मोटर वाला निश्चिंत होकर अपनी मोटर चला ले जाता है। वैसे ही मेरे लिए एक रास्ता हो गया और वह व्रत मेरे लिए एक लक्ष्य बन गया।

0: आरंभ में बापू का आश्रम कोचरज में था, बाद में साबरमती के किनारे नए सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुई। उस आश्रम के एक ओर शमशान था और दूसरी ओर जेल थी, और सामने खड़ी थी कपड़े की मिल। रोज सवेरे चिमनियों से धुआं निकलता, मानो धूम्रपान शुरू हुआ। ये देखकर बापू कहते थे,
1: हमको इसे टक्कर लेनी है। शत्रु सेना सामने खड़ी है और बगल में शमशान खड़ा है, जिसके दर्शन से परलोक चिंतन की जागृति रहती है कि रहना नहीं देश वीराना है। हम कोई गुजराती नहीं है, हम तो उस देश के रहने वाले हैं जहाँ से हमको काम करने के लिए गुजरात भेजा गया। बाकी अपना देश दूसरा है, इतना याद रखकर काम करना है, और समाज की ओर से कष्ट सहन करने पड़े तो भी समाज से प्रेम करना है, यह दिखाने के लिए कि अपनी दूसरी ओर यह जेल है, यह जेल अपना घर है।
0: कई बार आश्रम मंडली खुले में बैठकर कुछ खाती और उधर नदी के उस पार शमशान में दो चार शव जलते हो, ऐसा दृश्य दिख पड़ता था। विनोबा को ये बहुत अच्छा लगता था। एक बार प्रार्थना के बाद प्रवचन में विनोबा ने कहा,
2: बुद्ध भगवान से किसी ने पूछा कि खाने के लिए उत्तम स्थान कौन सा है, तो गजब का जवाब दिया उन्होंने, शमशान। तात्पर्य यह है कि खाते समय भी यह बात याद रखी जाए कि अपनी गति वही है जो सामने दिख रही है। तो फिर जैसे कोई प्रयोगशाला में प्रयोग चलता हो, वैसे नपातुला खाया जाएगा। भोजन विज्ञान का प्रयोग बनेगा, जितनी भूख होगी उतना ही खाया जाएगा। आने वाला कोई भी क्षण अपने पंख पर मृत्यु को चढ़ाकर आ सकता है।
0: ये सब देखकर विनोबा के मित्र श्री गोपाल राव काले कहते हैं कि विनोबा के लिए जिंदगी भर वर्तमान क्षण ही अंतिम क्षण रहा है। प्रार्थना के पहले बापू घुमा करते थे, घूमकर लौटने के बाद प्रार्थना होती थी, फिर थोड़ी चर्चाएं होती थी, और फिर सब अपने अपने काम पर चले जाते थे। उन दिनों बापू बहुत बार विनोबा से कहते थे,
1: देखो विनोबा, हमको गांव गांव में फैलना है, इसलिए यहां मैं जामन बनाने का काम कर रहा हूं।
2: मैं समझ गया था कि बापू अच्छा जामन बनाकर उसको समाज रूपी दूध में मिलाकर सारे समाज को बापू दही बनाना चाहते थे। इस पर मैंने बापू से कहा कि जामन यदि अलग कटोरे में ही पड़ा रहे तो वह खट्टा हो जाएगा और निकम्मा हो जाएगा, जैसे गुफा के मुनि का होता है। कहीं कोई छोटा सा बच्चा रो दिया तो उसकी समाधि टूट जाएगी, इसलिए जामन को दूध में मिलाना ही चाहिए। मोटे तौर पर आध्यात्मिक गुणों का विकास समाज में रहकर ही होता है।

0: साबरमती आश्रम के आरंभ के दिन थे। गांधी जी के आकर्षण से अनेक नर रत्न आश्रम में इकट्ठे हुए थे। विनोबा, काका साहब, किशोरलाल भाई तो जाने हुए रत्न थे। एक दफा गर्मी के दिनों में छुट्टियों में उस शाला के शिक्षक और विद्यार्थियों ने पदयात्रा करते हुए आबू जाने का तय किया। पदयात्रा के अनुभवी और प्रेमी दो ही शिक्षक थे। एक थे हिमालय में सैकड़ों मील की यात्रा करने वाले श्री काका साहब और दूसरे थे महाराष्ट्र में पदयात्रा करके घूमने वाले श्री विनोबा। सबने मिलकर इस पदयात्रा का नेतृत्व विनोबा को सौंपा। गांधी जी ने पदयात्रियों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि कभी भी निश्चित मील से कम प्रवास नहीं करना। ये आदेश आरंभ में थोड़ा कठिन लगा। साबरमती से पैदल चलकर सब आबू पहुंचे। वहां प्रसिद्ध जैन मंदिर देखकर सब वापस लौटे। उस वक्त पदयात्रियों की छोटी छोटी टोलियां बनी और अंतिम टोली में तीन व्यक्ति रहे, विनोबा जी, श्री काका साहब और विलासपुर के श्री रामानंद जी।
1: हम तीनों पालनपुर दिशा के रास्ते से चल रहे थे। साधारण तौर पर रेल की पटरी के साथ साथ चलने का हमने तय किया था और अब तो अहमदाबाद के नजदीक पहुंच भी रहे थे। उस रात को साबरमती स्टेशन पर पहुंच जाने की कल्पना थी। संध्या काल को एक छोटे से स्टेशन पर पहुंचे और स्टेशन मास्टर से पूछ लिया कि यहाँ से साबरमती स्टेशन कितना दूर है। उनसे ही मांग कर पानी पी लिया और फिर आगे बढ़े।
2: बहुत दिनों का सहप्रवास था, शाम भी ढल चुकी थी, इसलिए बातचीत बंद हुई और मौन यात्रा चालू हो गई। मैं कुछ आगे चल रहा था। विनोबा और काका साहब बीच बीच में थोड़ा बोल लेते थे और साथ साथ चलते थे। इतने में एक छोटा सा पुल आया। उस पुल पर पथिकों के चलने के लिए बगल से कोई रास्ता नहीं था। दो पटियों के बीच में मिट्टी भी नहीं थी। एक एक फीट के अंतर पर वे पटियां थी। एक पटिया से दूसरी पटिया पर ही पाँव रख सकते थे। दोनों पटियों के बीच से नदी का पानी भी दिखता था। पुल पर चढ़ गए। आधी दूर तक पहुंचे होंगे कि पीछे रेलगाड़ी की आवाज सुनाई देने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो एक रेलवे इंजन डब्बों के साथ काल पुरुष की तरह बड़ा आ रहा था। मैं सबसे आगे था, फिर काका साहब और आखिर में विनोबा। गाड़ी को देखते ही सब दौड़ने लगे। पुल पर से नीचे कूदना भी संभव नहीं था। बगल में उतर पड़े यह भी संभव नहीं था। उस स्टेशन मास्टर ने बताया भी नहीं कि इस वक्त कोई ट्रेन आने वाली है। वह जानता था कि हम लोग रेल के रास्ते से जाने वाले हैं, परंतु ईश्वर को कसौटी करनी थी तो वह भी कहना भूल गया।
3: रामानंद जी तो खूब आगे थे, अतः पुल पार करके नीचे उतर गए। मैं भी तीव्र गति से दौड़ने लगा। पीछे कालदूत ही साक्षात जो आ रहा था। विनोबा भी दौड़ रहे थे, परंतु उनकी आंखें कमजोर थी। चश्मा और चप्पल न पहनने का उनका व्रत था। दौड़ते दौड़ते दोनों पटियों के बीच कहीं पांव फिसल गया तो गाड़ी पीछे अपने क्रूर पंजों में दबाने को आ ही रही थी, परंतु कौन क्या कर सकता था। मैं तो बच गया। आगे पहुंचकर एक तरफ उतर गया और धड़कते हुए दिल से आने वाले उन भयंकर क्षणों का इंतजार करने लगा। मैंने देखा कि विनोबा दौड़ते आ रहे हैं और इंजन उनके नजदीक पहुंच गया है। दोनों मित्रों के हृदय पर सवा सवा मन के बोझिले पत्थर मानो लद गए थे। संध्या का समय, चारों ओर अंधेरा। विनोबा के नजदीक जाकर मैं चिल्ला उठा, विनोबा, जंप टू द लेफ्ट, जंप टू द लेफ्ट। अंधेरे में विनोबा दिखते नहीं थे। मेरी आवाज सुनकर विनोबा बाई तरफ कूदे और मैंने उनको अपनी बाहों में थाम लिया। दो चार क्षणों में ही वह कालदूत धड़धड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। जिस वक्त विनोबा को मैंने खींचा, उस वक्त मुझे रेलगाड़ी की आवाज के साथ साथ विनोबा के मुख से निकलता हुआ प्रभु नाम भी सुनाई दिया।
1: मुझे पटियां दिखाई नहीं दे रही थी, परंतु मुझे मालूम था कि ये पटियां समानांतर होती हैं, इसलिए दौड़ने के लिए मैंने एक ताल तय कर लिया। बचपन में मैंने वैसी कोशिश की थी तो भगवान का नाम लेते लेते उसी ताल पर दौड़ने लगा। इंजन एकदम नजदीक आ गया है, ये मैं समझ गया था। काका साहब दिखते नहीं थे, परंतु आवाज सुनकर मैं एकदम बाई ओर कूद पड़ा।
3: मेरी बाहों में विनोबा के आने पर मुझको भी लगा कि परमेश्वर ने ही इनको बचाकर प्रसाद रूप में लौटाया है। उस वक्त तो सबके दिल भी भरे हुए थे, ईश्वर का कैसे उपकार माने, कोई कुछ बोला नहीं। रात को आश्रम पहुंचे और सो गए। दूसरे दिन मैंने बापू को सारी घटना सुनाई और कहा, अब तो विनोबा को चप्पल और चश्मा पहनने की आज्ञा दे ही दीजिए बापू। आज भी जब वो प्रसंग याद आता है, प्राण हाथों में लेकर हमारा दौड़ना, विनोबा को हाथ खींचकर पकड़ना, गाड़ी की धड़धड़ आवाज और उन सब के बीच भी विनोबा के मुंह से राम नाम सुनाई देना, ये सब नजरों के सामने आता है।
4: देह नश्वर है और आत्मा अमर है, ये बातें तो लोग विनोबा के मुंह से बचपन से सुनते आए हैं, परंतु जब साक्षात मृत्यु पीछे से आती हो, तब जीवन और मृत्यु के आलिंगन में से गुजरते समय भी विनोबा के मुंह से सुनाई दिया राम नाम, मानो गीता मूर्तिमंत हो आई हो। ठंडे कलेजे से जीवन की परिपूर्ण सुरक्षा में राम नाम बहुत सुनने को मिलता है, परंतु यहां तो मरणांगन में भी अरे अरे मर गया बचाओ बचाओ के बदले ईश्वर की इच्छा में अडिग श्रद्धा दिखाने वाले नाम स्मरण, यहां यू भी बहावा है और यू भी वहावा है। पुरुषार्थ 100% जीवन का, परंतु मालिक का चाहा जो कुछ भी हो उसमें अपने दिल की पूरी खुशी।
5: 1920 में नागपुर कांग्रेस के बाद मेरे आग्रह से गांधी जी ने वर्धा में एक आश्रम खोला। सारे भारत की दृष्टि से अहमदाबाद एक तरफ पड़ जाता था। भारत के मध्य में ऐसी महान प्रवृत्ति का कोई केंद्र हो, इस दृष्टि से महाराष्ट्र का वर्धा क्षेत्र पसंद किया गया और वर्धा नगर से 4 मील की दूरी पर सेवाग्राम आश्रम की स्थापना हुई। बापू ने विनोबा को उस आश्रम की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। 1926 में चैत्र मास के प्रथम दिवस पर विनोबा जी वर्धा पहुंचे।
4: 21 से 38 तक विनोबा जी सेवाग्राम में रहे, बाद में पवनार में उनका परमधाम आश्रम बना। इतने साल तक एक स्थान पर ही बैठे थे, परंतु चित्त से वे उन्मुक्त थे, किसी स्थान से चिपके हुए नहीं थे। वे कहते कि परमधाम यानी दुनिया का मध्य

0: घर पर कोई योजना नहीं बना सकता।
1: मैंने कहा, मेरे आधार पर योजना मत बनाइए, स्वतंत्र आधार पर बनाइए। मैं तो यहां हूं, तब तक हूं।
2: जमनालाल जी का देहांत हो गया था। उस संवाद को याद करके विनोबा जी कहते हैं कि आज जमनालाल जी जीवित होते तो मैं पूछता। मुझे कह रहे थे कि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, कब तुम भाग जाओगे। अब आप ही कहां भाग गए, यहां तो सभी ने आपका भी भरोसा किया था कि सब संस्थाओं के आप आधार हैं। आपने तो कभी छोड़ने की बात भी नहीं की थी, फिर सारा छोड़कर क्यों भाग गए।

0: जब तक बापू थे तब तक खुद होकर कभी स्थान छोड़ने का विचार मन में आया नहीं था। बापू की आज्ञा के बिना स्थान छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता था। चित्त की ऐसी वृत्ति हो जाने के कारण बापू के रहते कभी कोई चिंता ही नहीं थी, परंतु बापू के जाने के बाद देश की परिस्थिति देखकर बाहर निकलने की, स्थान छोड़ने की प्रेरणा हुई। बापू होते तो शायद इस आश्रम के बाहर कभी नहीं निकलता।
1: आश्रम के किसी लड़के ने विनोबा के पास जाकर जिद पकड़ी कि मेरे लिए कोई चित्र बना दीजिए। विनोबा ने बच्चे से पूछा कि किसका चित्र बनाना है। उत्तर में जवाब आया, मनुष्य का। और विनोबा ने स्लेट पर एक मनुष्य का चित्र बना दिया। पास में ही जानकी देवी बजाज खड़ी थी। स्लेट पर के मनुष्य का चित्र देखकर वे एकदम चौंक गई। अरे, ये मनुष्य तो बापू है, कहकर जोर जोर से मदालसा को पुकारने लगी। मदालसा के पहुंचने तक विनोबा ने चित्र पहुंच डाला।
2: अरे रुको रुको, देखो इनको अपने पिता के स्थान पर बिठाया है, परंतु अभी दो क्षण पहले स्लेट पर बापू का चित्र बनाया था। मैं नाना कहती रही और इन्होंने पोंछ डाला।
3: बाबा, आपने वह चित्र क्यों पोंछ डाला?
0: अरे, ये तो स्लेट पर बनाया हुआ चित्र था। गांधी जी का चित्र बनाने के लिए यह थोड़ी ही किया था। यह छोटा लड़का जिद पकड़कर बैठा था कि मनुष्य का चित्र बना दो, तो मनुष्य कहते ही मेरे सामने गांधी जी खड़े हो जाते हैं। सो मनुष्य का चित्र बनाते बनाते वह बापू का चित्र बन गया। अपने दुर्बल पांव से, परंतु बापू के ही मार्ग पर चलने की मेरी कोशिश है।